अभी आप सुन रहे थे हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी फिर वही दिल लाया हूँ। द टाइटल आप सुनेंगे, लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, बातों को भूल जाना भी सुकून देता है कभी कभी। बातों को भूल जाना भी सुकून देता है कभी कभी। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है।

मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे लखों हैं निगाह में जिंदगी की राह में, फ्रॉम द मूवी फिर वही दिल लाया हूँ, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में, तीसरी मंजिल है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। लेकिन ये गीत चलाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ वक्त के बारे में। वक्त सभी जिंदगी में, वक्त सबकी जिंदगी में वक्त बदलता रहता है, सबकी जिंदगी में वक्त बदलता रहता है। कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी गम तो कभी खुशी। ऐसा इंसान कोई नहीं है जिसके ज़िंदगी में वक्त एक सा रहे। इसलिए अच्छे वक्त में कभी अपनी ज़ात और वक्त पर गुरूर नहीं करनी चाहिए, और बुरे वक्त में कभी ना शुक्र और मायूस नहीं होना चाहिए।

तीसरी मंजिल से हमने पेश किए हैं दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। किस्मत में होगा वो चल कर आएगा, किस्मत में होगा वो चल कर आएगा, और जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। लाट साहेब है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे।

सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे. फ्रॉम द मूवी लाट साहेब से हमने पेश किए हैं. मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वालों को ही पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं. मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होता है, तोड़ने वालों को नहीं. गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है. तुम्हारे प्यार में हम बेकरार होके चले, शिकार करने को आए शिकार होके चले. फ्रॉम द मूवी शिकार से हम पेश करते हैं.

अभी आप सुन रहे थे तुम्हारे प्यार में हम बेकरार होके चले, शिकार करने को आए शिकार होके चले। मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में, फ्रॉम द मूवी आए मिलन की बेला से हम पेश करते हैं मैं प्यार का दीवाना।

चलन की बेला है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आपने सुने हैं मैं प्यार का दीवाना। जी हाँ सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस 55 से आप सुनेंगे, और गीत का बोल है जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। मोहम्मद रफ़ी के साथ में गीता दत्त आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद यानी मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस 55। दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नज़रों की तरफ देख जमाने पे ना जा। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये है जो लोग दिल से फिक्र करते हैं वो सुबह से ज़ाहिर नहीं करते।

अभी आप सुन रहे थे दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नजरों के तरफ देख जमाने पे ना जा। फ्रॉम द मूवी हमसाया से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी में उस इंसान को मत खोना, जिंदगी में उस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके फिर खुद तुम्हारे पास आए। जिक्र होता है जब कयामत का, मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों। फ्रॉम द मूवी माय लव से आप सुनेंगे, क्षमा करना सुनने वालों, मोहम्मद रफी जी नहीं बल्कि मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं। द माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

दमाई थी मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे, जिक्र होता है जब कयामत का, फ्रॉम द मूवी माइल ऑफ से हमने पेश किए हैं। हमारी नीयत की पैमाइश इस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमें कुछ नहीं दे सकता। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। कन्यादान है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी जी, आपको सुना रहे थे फ्रॉम द मूवी कन्यादान से वो तेरे प्यार का गम। फ्रॉम द मूवी माई लव से आप सुनेंगे द माइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

दमाईती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे वो तेरे प्यार का गम, माई लव है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। ना आदमी का कोई भरोसा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी आदमी।

0: होते।
1: अभी आप सुन रहे थे ना आदमी का कोई भरोसा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी आदमी से हमने पेश किए हैं, परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म, और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी माया से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले, मेरा दिल, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है यार, यहाँ तारीफें भी होंगी और जलील भी किया जाएगा। मुकेश आपको सुनाने वाले हैं और विश्वास है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया।

अभी आप सुन रहे थे चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। ये वन ऑफ माय पापा'स फेवरेट सॉन्ग थे और ये हमेशा मुझे याद रहेगा। फ्रॉम द मूवी विश्वास से हमने पेश किए हैं द माइटी, मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, प्रोफेसर है फिल्म का नाम और गीत का बोल है ए कुल बदन। ये गीत हम पेश करते हैं शर्ली जी के वास्ते, जबकि शर्ली जी प्रोग्राम को भी सुन रही है, तो शर्ली ये स्पेशली आपके लिए है।

प्रोफेसर है फिल्म का नाम और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे ए गुलबदन। और ये सॉन्ग हमने पेश किया है स्पेशली शर्ली जी के वास्ते, जबकि शर्ली जी प्रोग्राम को भी सुन रही है। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। एक हसरत थी कि आजल का मुझे प्यार मिले। दमाइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

दमायती मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। आशा परेख इस फिल्म में काम किए हैं, साथ में मनोज कुमार जी और सिमी प्राण के साथ में। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं भरी दुनिया में आखिर दिल। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन रहे थे भरी दुनिया में आखिर ड्यू को समझाने कहाँ जाए, आपको सुनाने वाले थे मोहम्मद रफ़ी जी। रोज़ स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, रोज़ स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, ज़िंदगी को बदलने के लिए अपना भी एक स्टेटस ज़रूरी है। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, फ्रॉम द मूवी दिल ने पुकारा से हम पेश करते हैं, दमायती मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

0: दिल ने पुकारा फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आपको सुनाने वाले थे दमायती मुकेश जी। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, फ्रॉम द मूवी मेरे हुजूर।
1: फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले

मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे मेरे हुजूर है फिल्म का नाम। गम उठाने के लिए मैं तुझिए जाऊंगा, हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो मेरे सनम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, और ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ बतलाना चाहती हूँ, और वो ये है, शिकायत तो बहुत है तुझसे ऐ ज़िंदगी, शिकायत तो बहुत है तुझसे ऐ ज़िंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया है तूने वो भी कितनों को नसीब नहीं होता।

अभी आप सुन रहे थे हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी फिर वही दिल लाया हूँ। द टाइटल आप सुनेंगे, लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, बातों को भूल जाना भी सुकून देता है कभी कभी। बातों को भूल जाना भी सुकून देता है कभी कभी। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहते हैं।

मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे लखों हैं निगाह में जिंदगी की राह में, फ्रॉम द मूवी फिर वही दिल लाया हूँ, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में, तीसरी मंजिल है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। लेकिन ये गीत चलाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ वक्त के बारे में। वक्त सभी जिंदगी में, वक्त सबकी ज़िंदगी में वक्त बदलता रहता है, सबकी ज़िंदगी में वक्त बदलता रहता है। कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी गम तो कभी खुशी। ऐसा इंसान कोई नहीं है जिसकी ज़िंदगी में वक्त एक सा रहे। इसलिए अच्छे वक्त में कभी अपनी ज़ात और वक्त पर गुरूर नहीं करनी चाहिए, और बुरे वक्त में कभी ना शुक्र और मायूस नहीं होना चाहिए।

दूसरी मंजिल से हमने पेश किए हैं दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। किस्मत में होगा वो चलकर आएगा, किस्मत में होगा वो चलकर आएगा, और जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। लाट साहेब है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे।

सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। फ्रॉम द मूवी लाट साहेब से हमने पेश किए हैं। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वालों को ही पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होता है, तोड़ने वालों को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार होके चले, शिकार करने को आए शिकार होके चले। फ्रॉम द मूवी शिकार से हम पेश करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे तुम्हारे प्यार में हम बेकरार होके चले, शिकार करने को आए शिकार होके चले। मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में। फ्रॉम द मूवी आए मिलन की बेला से हम पेश करते हैं मैं प्यार का दीवाना।

0: ये मिलन की वेला है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आपने सुने हैं मैं प्यार का दीवाना दीवाना।
1: भाई बहनों, क्या आप फिर से अपनी जिंदगी को अच्छे से चुन लिया है? जो करना चाहते हैं वो करें और उसका आनंद ले मित्रों, उसका आनंद ले। आपको वो जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी बस चलती रहती है, रुकती नहीं है, नहीं रुकती है। ट्रेन को पता ही नहीं चलता कि कौन बाहर कूदता है और कौन अंदर आता है। आपके भविष्य के निर्देशक वह आप हैं, कोई और नहीं दोस्तों, आप ही हैं। आप ही अपने जीवन की रचयिता हो, आप ही और कोई नहीं।

दोस्तों, झूठे और बदनाम शासक हजारों वर्षों से ऐसे ही आ रहे हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये झूठी शक्ति और लालच मनुष्य पर हावी है। मित्रों, मनुष्य अपनी प्रकृति, आदतों और गुणों को भूल गया है, एकदम से भूल गया, जिससे राक्षसी आदतें हावी हो गई है। मनुष्य केवल अपना और अपने लोगों का हित देखते हैं, जबकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उन बैठे हुए शासकों के झूठे अहंकार और लालच के कारण कई निर्दोष लोग नष्ट हो जाते हैं, पीड़ा सहते हैं, दुखी हैं, फिर भी ये झूठी शासकों ये सब चीज़ों को नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने जेब को देखते हैं, अपने जेब को भरते रहते हैं। मित्रों, इन सब चीज़ों पे ध्यान करना।

भाई बहनों, उन चीजों को भूल जाइए जो आपको दुखी करती हो। उन पलों को याद करें जो आपको खुश करते हैं मित्रों, और जो मुसीबतें बीत गई उन्हें भूल जाओ, उन्हें भूल जाओ। कोशिश करो भूल जाने के लिए। आपके रास्ते में आने वाले आशीर्वाद को स्वीकार करो, उन चीजों को स्वीकार करो मित्रों।

भाई बहनों, सुखी जीवन जीने के लिए बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये सब हमारे सोचने के तरीके में आप पर ही निर्भर करता है और आप अक्सर दैनिक जीवन में इसे देखा करते हैं। मित्रों, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनमें से आप बहुत कम उपयोग करते हैं, फिर भी लोगों के पास और अधिक होना चाहिए। यदि आप उन अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए छोड़ सकते हैं मित्रों, तो आप खुद को काफ़ी बेहतर और तनाव से मुक्त अनुभव करेंगे।

भाई बहनों, जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? ये नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि हमारे पास जो है वो बहुत है, और ये जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, मैं दैनिक जीवन में किसके साथ जुड़ता हूँ, मेरे लोग कौन हैं, क्या वे सभी विश्वसनीय हैं? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं अभी उनकी मदद कर सकता हूँ।

मित्रों, प्यार प्यार नहीं लेकिन प्यार पाना एक बात है, प्यार करना और प्यार किया जाना एक दूसरी बात है। बस इतना ही याद रखे, लेकिन इसे जरूर प्राप्त करें, जरूर प्राप्त करें मित्रों, फिर तुम्हें भी मधुर और दयालु तथा ईर्ष्या रहित होना चाहिए, ईर्ष्या रहित होना चाहिए। प्यार से और ईर्ष्या बात ना ही बनत है मित्रों, ये याद रखें।

तो ये थी मेरी बेहाली, प्रभु से बिछड़कर मेरा ये हश्र हुआ। लेकिन लौकिक जिंदगी में तो मैं निर्भीक था, बिल्कुल निर्भीक। लोग कहते थे ऐसे है कबीर, सर से पांव तक मस्त मुल्ला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भक्त के लिए निरीह लेकिन भेषधारी के आगे प्रचंड, बाहर से कठोर हाँ लेकिन भीतर से कोमल, जन्म से अस्पृश्य लेकिन कर्म से वंदनीय, सर्वथा वंदनीय। अब मैं क्या जानूं मैं कैसा था। हाँ लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि जिंदगी भर अपने ऊपर कलंक लगाने का मौका मैंने किसी को नहीं दिया। मेरे प्रियतम ने, मेरे बालम ने ये जो चुनरी मुझे पहनाई थी उसे आज तक मैंने मैली नहीं होने दी। और आज ये साफ पाक जतन की चुनरी उन्हें लौटाना चाहता हूं लेकिन अटक गया हूं। आज मेरी आत्मा मुक्ति नहीं पा रही है, भटक रही है। क्यों? आज मानव मानव की पीड़ा जानने के लिए तैयार नहीं, मानव मानव में ईश्वर देखने के लिए तैयार नहीं, तो मेरी आत्मा मुक्ति कैसे पाएगी? जिन जिन बातों को उखाड़ने के लिए, मिटाने के लिए मैंने मेरा पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, आज उन्हीं बातों को लेकर अगर मेरा हिंदुस्तान जल रहा है तो मेरी आत्मा मुक्ति कैसे पाएगी? इसीलिए आप सब लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि सारे गलत रास्तों को अपनाना आप छोड़ दीजिए। अरे राम और रहीम के भक्त है ना, तो उन्हीं की बनाई हुई ये दुनिया और भी सुंदर बनाने की सोचिए। हिंसा रोकिए और ढाई आखर का मंत्र प्रेम प्यार उसे अपनाइए, तभी जाके मैं अपने भगवान राम से मिल पाऊंगा और उनसे ये अभिमान से कह पाऊंगा कि बालम ये आपकी दी हुई चादर, ये आपकी अमानत आज आपको लौटाने आया हूं, इसे स्वीकार कीजिए और मुझे आप में समा लीजिए, मुझे आप में समा लीजिए भगवान, मुझे आप में समा लीजिए।

जय जय राम, जय जय राम। आप सभी को हार्दिक से स्वागत है वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाहुन के सुनने वालों, प्रिय भक्तजनों, प्रिय आत्माओं, आप सभी को हार्दिक से स्वागत है ये खूबसूरत दिवस में। भजन माला कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है, आप इसे जरूर से सुने, अपन जीवन में प्रयोग करें और जरूर से इसमें से आप ऊर्जा प्राप्त करें।

0: आयुष्मान, आओ हनुमान।
1: महात्मन, आप मुझे पहचानते हैं?
0: हम त्रिकालदर्शी हैं, हम सब कुछ जानते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, ये भी जानते हैं,

मुझे क्षमा करें भगवान, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि मैं रात ही रात में बूटी लेकर पहुंच जाऊं। मैं तो एक राम भक्त की कुटिया देखकर केवल प्यास बुझाने उतरा था।

मन मन राम का मंदिर है, यहाँ उसे विराजे रखना। मन राम का मंदिर है, यहाँ पर उसे विराजे रखना। जिसके सीने में श्री राम है, जिनके चरणों में सब धाम है, जिनके लिए सब कुछ दान है, जिनकी मंत्र वो तो हनुमान है।

रामायण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। राम भक्त ले चला है राम भक्त भरत जी और ले चला है राम के निशानी उनका पादुका जो वन में जाकर और भरत जी राम को वापस लाने को गए थे पर उनको पादुका लेकर और अयोध्या लौटे थे। राम जी की सवारी निकली है सच धज के। राम जी की सवारी निकली है सच धज के। राम जी की लीला है बेहद न्यारी न्यारी। श्री राम का नाम है सदा सुखदायिनी और हितकारी। आप सभी को एक शुभ दिवस पेश किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से भजन माला कार्यक्रम में।

सुनो रे राम कहानी आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है ये सुंदर सा भजन प्रोग्राम फागुन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। भगवान राम विष्णु जी का सातवां अवतार है। उनका जन्म त्रेता

यही रात अंतिम और यही रात है भारी, हम अगर जान जा कि हमारा आखिरी सांस हमें लेना है तो कितना भारी पड़ जाएगा। अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम वो राम है, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है।

अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर, हमने सुने राम सेतु बंधन की, राम नाम से तैरने लगते हैं भी पत्थर। तो सोचो हम इंसान हैं, हम अगर राम का नाम ले तो हम कैसे ना तैरते रहेंगे। ये कठिन कली काल पापों का खजाना है, ये कठिन काली काल पापों का खजाना है ज़्यादा तौर पर। इसमें ना धर्म है ना ज्ञान है और ना योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी की ही भजते हैं वो ही चतुर है। श्री राम जी की कृपा से आपका हर पल शुभ सुंदर सुखदायक एवं खुशियों से भरा रहे।

आप सुने कि जिन पर कृपा श्री राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। देसा मूल्य कलयुग इस अंस्कत कामर फान सोंद देसा मूल्य कलयुग इस अंस्कत कामर फान सोंदन सौंदर धर्म सौंदर कैनस सौंदर योग सौंदर मंत्रस इन देस वेरल्ड सैन सै दी आल आंद्र फर्त्रोवन ओपगेवन एन अलेन हेड राम अलेन हेड राम आन बेदन द वैसन।

वे अवध की ओर सजनी। अवध यानि कि अयोध्या। अयोध्या भी एक शहर है भारत में, और हम लोग भी तीर्थ करने जाते हैं अयोध्या में। और अगर हम समझदारी से काम करें तो समझदारी ये है कि हमारा शरीर जो है ना, इसे हम अयोध्या बना ले, और इससे और इस अयोध्या जो है ये शरीर हम अयोध्या बना ले, और यहीं से हम राम नाम का जप करते हुए इसे अंदर लाए, तो हमें अयोध्या जाना तो आवश्यकता तो नहीं होगा। तब घर बैठे हम अपना शरीर को, अपना तन मन हम अयोध्या बना ले और राम नाम जपे, तो घर बैठे ही हम हमारा उद्धार अवश्य अवश्य अवश्य हो जाएगा। आलिन द तिमिद एंड द स्वकन लातन आलस अन हैथ लॉट ओवर मार द स्टर्क एंड सेल्फ-फॉरसेकर दन द स्टर्क एंड द सेल्फ-फॉरसेकर द मेंसन वर्ट्रोवन नोइट ऑफ हैथ लॉट ऑफ द बेस्टेमिंग। ze gaan gewoon daarvoor. जैसे हनुमान जी गए थे जीवन भूति लाने के लिए, तो उसको रास्ते में कितने जने रोके, पर वो अपने लक्ष्य के दौर चले गए। एंड आस यू ओक आस वे अलमाल फर्ट्रोवन Also allemaal vertrouwen hebben in onze bestemming, dan kunnen we gewoon doorgaan en doorgaan.

अवश्य सबका मंगल होए। Het kost geen geld, mijn lieve mensen. Het kost geen geld. Helemaal niets. Alleen een beetje energie. En dat is, zeg gewoon raam raam. Zeg gewoon raam raam. En het voelt geweldig. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. कहते कि ना खर्चा लगता है और ना पैसा लगता है, राम राम बोलिए, बहुत अच्छा लगता है। भक्तिमाला कार्यक्रम यहाँ से संपूर्ण होने को आ गए हैं। तेने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। स्वीकार कीजिए इस वक्त के लिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार। क्वाट ओवर आख हो चला है, क्वाट ओवर आख हो चला है। आज बुधवार के सुबह की कार्यक्रम से जो आप और मैं जुड़े हैं, जैसे पहले मैं बताई थी, फिर एक बार बता देती हूँ कि आज 6 तारीख मई हो चला है। और ये 6 तारीख मई जो है, आप इसे कैसे रंगीन बनाओगे? अगर आप चाहे तो भी हमारे से ये शेयर कर सकते हो।

फिल्म धुरंधर से ये सुंदर सा गीत हमने सुने हैं, आज के प्रोग्राम में शामिल किया गया है अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में।

मेरी दिल लगी को हम इस पिक्चर में आर्यन खान अपना कमाल दिखाए हैं।

पीएस रावत, नहीं नहीं नहीं, म्यूजिक दिया है पीएस रावत और संगीत का लिखने वाला है शैतान सिंह। शैतान सिंह ये गीत लायरिक्स जो लिखे हैं और गायक है प्रकाश रावत, प्रकाश रावत जो रावर, जी हाँ।

अच्छा लगता भी ऐसा नया संगीत सुनने के लिए, और ये सब सेलेक्ट किया है आपके लिए और पेश हो रहा है अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

0: वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। सुनने को
1: सारेगामा कारवा द परफेक्ट गिफ्ट,
0: सुनने के लिए बहुत उत्सुक रही आप भी। आपने फोन करके और कहा तो यहाँ से आपके लिए भी पेश हुआ।

धुरंधर, फिल्म धुरंधर से रणवीर इसमें अपना कला दिखाए हैं। इस बार सुनेंगे सैयारा से।

धुन फिल्म सैयारा से निकाला गया है। मिथुन लेखक है ये गीत का और सिंगर है अरिजीत सिंह। ये भी एक बहुत सुंदर फिल्म है, आप नहीं देखे होंगे तो जरूर से देखना। कभी काल के ये सब पिक्चर जो है बायोस्कोप में भी इसको रिलीज़ किया जाता है यहाँ हॉलैंड में, तो ज़रूर से वक्त बनाकर याद कर देखना, बड़े पर्दे पर फिल्म देखना, पिक्चर देखना कुछ अलग है, और घर पर बैठकर देखना ये भी एक ख़ास है।

इस बार है ये आंखें गीत का बोल है।

ये आंखें गाकर सुना दी हमको शाहिद मालिया। शाहिद मालिया के आवाज़ में ये सुंदर गीत हमने श्रवण की है और गीत का लेखक जो है शिल्पा अग्रवाल। शिल्पा अग्रवाल ये लायरिक्स जो लिखे हैं भी सुंदर लगता है सुनने के लिए ये नए गाने जो हैं, इसमें अपना रंग है, अपना चमक है।

0: हाँ जी, जिनका इंतज़ार था वो आ गया है आकाश में। तो हम बहुत प्यार के साथ श्री पंडित राजकुमार महात्म जी को यहाँ पर हार्दिक से स्वागत कहती हूँ। पंडित जी, आपको स्वागत है, नमस्कार हो।
1: नमस्कार, धन्यवाद जी। हरि ओम महादेवम नारायण परम ब्रह्म नारायण परम तपम नारायणो परो देव सर्वनारायण सदा ओम नीलम भुजिश्यामल कोमलंगम शीतल समारूपित्वाम भागम पाणु महासायिक चारु चापम नमामि राम रघुवंश नाथम। हरि ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः स्वाहा च सूत्राय च मोक्षुक्षरूप ईश्वर को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। कल्याण करने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार। और अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहाँ तक हमारा आज पहुँचे आप सभी को जाकर था मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीताराम पहुँचे। खास करके राधे उफान को जो मालिक है मैं उनकी भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ जो समय प्रदान किया है प्रचार करने के लिए। हम आप अभी कितना न ले रहे थे जहाँ पर संता जी ने राधे उफान को माध्यम से मैं आप कितने अच्छे ढंग सेवा कर रहे थे उनको मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ आकाशवाणी के सुनने वाले। और बुद्ध की तरह आज भी भगवान कर्ण कंपा कृपा ताकि आपके बीच में कुछ ना कुछ धर्म संदेश हम प्रस्तुत कर सकें। पता ना कितने बुधवार हमारे आपके जीवन व्यतीत होगा वो बात हमें आपको मालूम नहीं। किसके मालूम है, किसे पता है, परमात्मा को। चलो कुछ रामायण के माध्यम से आपके बीच में मैं कुछ धर्म संदेश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्री सीता जी ने जगत को श्री धर्म समझाया है। श्री सीता जी में सारे सद्गुण एकत्रित हुआ है। रामायण में लिखा है कि राम जी को कभी कभी क्रोध आ जाता है, राक्षसों को साथ राम जी युद्ध करते हैं उस समय उनकी आंखों लाल हो जाती है, परंतु सीता माँ के जीवन में कभी भी क्रोध नहीं आया। सीता जी जीवन में कभी भी ऊंचे स्वर से नहीं बोली। सीता जी अतिशय मधुर बोलती है, उनके कक्ष बोलना आता ही नहीं है। दो प्रकार के हम शब्द प्रयोग कर कर्षवाणी और मधुर वाणी। तुम्हारे घर में इस पे ध्यान करना आकाशवाणी के सुनने वाले, हमारे आप या तुम्हारे घर में कला ना हो ऐसी इच्छा यदि रखते हो तो भले ही कुछ भी हो जाए कभी ऊंचे स्वर से बोलना नहीं। कर्षवाणी से कलहा का जन्म होता है, क्रोध की बुरी कर्षवाणी है। कर्षवाणी से विवाद उठता है और बात विवाद फिर मारपीट होती है। सब पापों को मूल कर्षवाणी है। शरीर में सब इस पे ध्यान करना, शरीर में सब ठिकाने पर हड्डी है किंतु जीभ में हड्डी नहीं है। जीभ में हड्डी नहीं परंतु वो जो कुछ जीभ जो कह देना आकाशवाणी के सुनने आलू, तो क्या कहा गया है ना, तूफान बहुत कराती है जीभ से कुछ शब्द निकल जाए ना कर्षवाणी तो क्या होते हैं, तूफान बहुत कराती है, हड्डी तिरछी वाणी बोली जाती है। इंद्र परस में राजसु यज्ञ के समय द्रौपदी ने क्या कहा, द्रौपदी ने अंधे के पुत्र अंधा कहकर दुर्योधन का अपमान किया था, उसने महाभारत के युद्ध के जन्म दिया है। एक ही समय से सीता जी जीवन में कर्कशवाणी बोली थी और उसी में से रामायण के अनेक करुणा प्रसंग निकला है। माया मारीच क्या जो बात आप जानते हैं आकाशवाणी क्रिश्चन वाले, माया मारीच के हाँ लक्ष्मण ही छल भारी आवाज से वहां पर पुकारते हैं, तो सीता जी भर्म में पड़ गई थी और कहे ना कौन, सीता जी भर्म में पड़ गई थी कि राम जी के संकट में है, उसने भी बहुत व्याकुल हो गई थी। लक्ष्मण जी से बहुत कूट वचन कहे थी कौन, सीता मैया, और उसमें से ही करुणा प्रसंग धारा निकल पड़ी। कर्षवाणी सो विष है, शिव जी ने विष गले में रखा है ना, गले में रखा है, जहर को गले में ही रखा लेना उचित है, उसे ना बाहर आने दिया और ना पेट में उतारने दिया जाया गया। कौन जो विष जो है ना, बोले ना शंकर बाबा विष जो है मस्त, कौन शंकर बाबा जो है विष को अपने गले में धारण किए, ना भीतर रखा ना बाहर, कहने के तात है पेट में उतारने दिया नहीं गया, और कोई कड़वा शब्द मुख से बाहर निकलने मत दो। फिर से बात दोहरा रहा आकाशवाणी क्रिश्चन वाले, कड़वा शब्द मुख से बाहर निकलने मत दो, और कोई कड़वाहट पेट में रखो नहीं, कोई निंदा करे दोष करे तो प्रतिकार ना करो, ना उसके पेट में रखो, उसको याद ना रखो, सहन कर लो और उसे भूल जाओ। हृदय में हरि को रखना है तो उसमें विष को ना रखो, निश्चय करो कि मुझे मधुर बोलना है, बोली तो ऐसा बोलो कि सुनने वाले को मन झूमने लगे, किसी का दिल दुखे ऐसा ना बोलो। लकड़ी के मार ध्यान करना, लकड़ी के मार भुलाई जा सकती है परंतु शब्द की मार भूलते नहीं, काम करते हुए किसी की भूल हो जाए तो मधुर वाणी से इशारा करो, वाणी मधुर होनी चाहिए, आनंद उपजे ऐसी होनी चाहिए। शब्द शब्द जो है ब्रह्म का स्वरूप है, समय जो विष्णु भगवान का स्वरूप है, जो सर्वकाल मधुर बोलता है उससे रोग नहीं होता, जो मधुर बोलता है उसका कोई शत्रु नहीं होता, जो मधुर बोलता है वही परमात्मा को अच्छा लगता है। क्या तुम जानते हो आकाशवाणी के सुने आलू, क्या तुम जानते हो कि श्री कृष्ण प्रभु ने हाथ में बांसुरी किस लिए रखी है, बांसुरी अतिशय मधुर बोलती है, बांसुरी सज्जन अथवा दुर्जन सबको साथ मधुर ही बोलती है, बांसुरी का नाच सुनकर हरिन भी दौड़ते आते हैं और विषधार नाग भी दौड़ते आते हैं, कस्तूर मृग सज्जन का स्वरूप है और विषधार नाग दुर्जन का बांसुरी का शब्द सुनकर सज्जन दुर्जन सबको आनंद होता है। बांसुरी कभी कड़वा शब्द बोल ही नहीं सकती, कर्कशवाणी बोलती नहीं, इसी कारण से तो वो परमात्मा के मधुरता इसी कारण से तो परमात्मा का आधार मृत की अधिकारी बनी है। जहाँ स्वार्थ होता है का सुनने के सुनने वाले, फिर से बात दोहरा रहा हूँ, जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ लोग बहुत ही मधुर बोलते हैं, स्वार्थ में मधुर बोलना ये सच्चा मिठास नहीं है। हृदय में मिठास हो तो वाणी में सच्चा मिठास आता है, परमात्मा ने हृदय दिया है मिठास भरने के लिए, और जीभ दी है मधुर बोलने के लिए। कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हारा कोई अपमान करे अथवा घर में नुकसान हो जाए, तो भी तुम ऊंचे स्वर से कभी ना बोलना। कर्षवाणी से ही कलयुग जन्म हुआ है आकाशवाणी के सुनने वाले। तो मैंने आपके शब्द के बारे में कहा, धर्म सबसे बड़ा धर्म क्या है? तुलसीदास रामायण में बात कितने सुंदर से में लिखा है, परहित सरी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम न दमाई। और ही बात जाकर के गीता के छठो अध्याय कृष्ण भगवान का है, ते प्रापन्ते मामे सर्वभूता हितरथ। इसका अर्थ है जो संपूर्ण भूतों के हित में लगा हुआ मनुष्य, जो सब में दूसरों के हित में जो कार्य करते, सबसे बड़ा धर्म वही है। दयाहीनम धर्म त्यजते, मन के द्वारा सब प्रकार से दूसरों को हित के इच्छा रखना, वाणी के द्वारा वाणी के दूसरों को मतलब सुख पहुंचाना। और जाकर प्रभु राम धर्म के बारे में लक्ष्मण से क्या कहते हैं, सम्मान प्रिय समुपजा सबसे अधिक मनुज मोहे भावा। इसके अर्थ मतलब यह है कि प्रभु राम कहे लक्ष्मण, मैंने सब कुछ बना लेकिन मानुष बहुत हम प्यार करते हैं, मानव से मनुष्य जो किसे मानव से मनुष्य बहुत प्यार करते हैं। कौन? प्रभु राम बोलते हैं। आकाशवाणी के सुनने वाले, आज अनेको धर्म उत्पन्न हुए है ना, लेकिन हमारा धर्म क्या है? सब मिट गए जहां से हमको मिटाने वाले, कुछ राज है जो हस्ती मिट नहीं हमारी। कहने के साथ ही अनेको धर्म है, मतलब जा करके अनेको धर्म बनाया गया, लेकिन हमारा सनातन धर्म आज सर्वविश्व में अपना झंडा उड़ा रहा है। हमारे धर्म करना शुरुआत नंत वो सनातन धर्म है। तो आकाशवाणी के सुने आलो, इस पे थोड़ा से ध्यान करना, माली आवर देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनलिया कल हमारी बार। आकाशवाणी के सुनने वालों, हमेशा बात में दोहरा रहा, फिर से बात दोहरा रहा हूँ, कौन बचा कौन बचेगा, वो किसका माल खजाना दुनिया थी, दुनिया रहकर पंछ उड़ जाना है, पंछी कब उड़ गया ना हमें आपको पता नहीं। युवाने द्वारा अपना परचम विग्रहण करने जा रहा हूँ। हरि ओम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्। हरि ओम, शांति शांति शांति, हरि ओम।

धन्यवाद के पात्र है श्री पंडित राजकुमार महातम जी, जो अपना अमूल्य वक्त निकालकर और सेवा में उपस्थित हो जाता है हर बुधवार की तरह। आज भी उपस्थित है और हमको सुंदर सा कथा सुनाई है। ये कथा सुनकर जरूर से हम इसे प्रयोग में लाए, अपने जीवन में उतारे। देने सुनने के लिए आपको, मुझे भी श्री पंडित राजकुमार जी को धन्यवाद किया जाता है। और यही आशा उम्मीद है कि हर बुधवार की तरह आप हर बुधवार भी उपस्थित रहेंगे। आप सभी को एक शुभ दिन। सैफन तीन ऊपर नहीं कहो चला है, सैफन तीन ऊपर नहीं कहो चला है। समय नहीं रुकता है और समय के साथ हमें चलना है। समय रुकने वाला नहीं है, जो रुक जाओगे तो पिछड़ जाओगे, अंतविकलिंग में पीछे रह जाओगे। पर समय तो जाएगा, तो वक्त के साथ चलना है, यही समझदारी है।

कलाकार इसमें है शाहरुख खान। ये आज के दौर के गीत और संगीत है। मेरे बन के रहना तू,

मेरी बन के रहना तू पेश किया गया। इस बार हम सुनेंगे अरिजीत सिंह जी की आवाज़ के, अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में मुस्कुराने की वजह तुम ही हो।

फिल्म सिटी लाइट से, फिल्म सिटी लाइट से अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में मुस्कुराने की वजह तो आप ही है, कितनी अच्छी बात है ना।

कैसे कटे सजनी तेरे बिन, सजना तेरे बिन तेरी याद सतावे। अरिजीत सिंह जी के आवाज़ में। अरिजीत सिंह जी भी कितने शानदार गीत गाए हैं, दिल छू जाने वाले गीत

तमिलनाडु के गीत वो भाषा वाले हमने हटा दी है, इस बार हम सुनेंगे फिल्म एनिमल से पहले भी मैं।

विशाल मिश्रा जी की आवाज़ में, विशाल मिश्रा जी की आवाज़ में एनिमल फिल्म का नाम। पहले भी मैं आपसे मिले थी रणवीर कपूर और तृप्ति धीमरी इसमें स्टार कास्ट थे। सुनने वालों, यहाँ से मैं आपसे इजाज़त ले रही हूँ। देने सुनने के लिए आपको हम दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और यहाँ से जाते समय आपको नमस्कार कहती हूँ, कहती हूँ भी कि आप यहाँ भी जैसे भी हो जरूर से खुशहाल में रहो। और ये बात तो अफसोस के बाद कहना पड़ता है कि दाते फंदा खम्पार मैं से मुतोलोस्टेल है मुतोलोस्टेल मार eerst volgende keer ga ik dat alles inhalen. Doe apparaat naar mij, zeker ze meer ik ooit kan na.

0: सुनने के लिए एक दिल धड़कने वाला गीत।
1: रिकॉर्डिंग यहाँ से आपके लिए है।

मेरे बीच के ये जो छोटे छोटे किस्से हैं ना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों फाहन के, तेरे और मेरे ये जो छोटे छोटे किस्से हैं ना, वो मेरे जिंदगी के बहुत बहुत खूबसूरत हिस्से हैं।

दिखने वाले क्या क्या नहीं देखा होगा। फिल्म का नाम चोरी चोरी चुपके चुपके उदित नारायण जी की आवाज में साथ दे रहे हैं अलका याग्निक जी।

दूसरों को सोता देखकर जो आंखें जागकर पड़ती है, दूसरों को सोता देखकर और जो आंखें जागकर और पड़ती है, वही एक दिन इतिहास रचती है।

दीवाना है ये दिल फिल्म चुपके चुपके से निकाल दिया गया है आपके लिए। और आप ही के साथ मैं भी एंजॉय करती हूँ ये सुंदर सुंदर गीत जो आप यहाँ से सुनते हैं प्लेलिस्ट पर जो यहाँ पर रखे हैं। झूठा ही सही मेरे दोस्तों, झूठा ही सही, मुस्कुराते रहना जरूरी है, मुस्कुराते ही रहना, झूठा ही क्यों नहीं। उदास देखकर लोग मजे बहुत लेते हैं, अकेला है कोई गम नहीं, अकेले है कोई गम नहीं, जहां इज्जत नहीं वहां हम नहीं।

टाइटल सॉन्ग हमने यहाँ से सुने चोरी चोरी चुपके चुपके। इस फिल्म में अपना कमाल दिखाए हैं सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीति सिंता। वेरी रोमांटिक फिल्म, और साथ ही साथ इनका गीत जो आपने सुने

Kala na jani unchi neech, kala na jani jant, Sorsati Mata DJ, humko apni aashirvaad. तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा एक बार फिर राम राम नमस्कार प्यार भरी दाम से सियकाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम यही है हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम

और दोस्तों इस ट्यून से आपको तो पता चल चुका होगा कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम हम तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपना देश सूरीनाम में। और सूरीनाम में भैया आप लोग जानो है, जहें देखो बस वहीं ही, जहें देखो वहीं सोना खुदा। भैया बेनलांत में सोना खुदा है, और जहां सोना है तो वहां लुटेरा भी बहुत ज्यादा है। आप लोग जानते हो जब देखो तो कहीं ब्रासिलियान तो कहीं ईट कहीं ऊ और जाए कि सबके लूट लेवे है। तो एक बार फिर यहाँ पर वही प्रॉब्लम आए ले हमारे जनता हौत बद्रैव सूरीनाम में। वो है बीते हुए रविवार को सोमदाह को दुई गो तुई हौत शुक्र भैया फन अन होत खफालन ऊपर से गिर गया भाई। बाकी ये बात ना है, ये गिरल है दुई गो लंडन ऊपर से नादा से फोर्स एस्ते इंफॉर्मेशन वारन अफ हकूमन ऑफ सो हनुम द हाई ग्रेड ब्लास्ट पे बार बे खातिर ओम एगो एक्सप्लोसिव भइल है इन खदील त फन मेन waar gesteende met een hoog goud gehalte wordt losgemaakt. De wapere ego kabel ego explosies van kritische jonge itoen dage. Tap sonoa miliga on hiape na de ontploffing, na de ontploffing. ढेर इलीगल साउथ सुकर्स उ रिक्टिंग हुआ मेरा वहाँ पर टैक्स फोर्स स्ट्रेट ऑफ एन फॉर यूथ द ग्रुप जिस वहाँ पे टैक्स फोर्स जरा हाँ ग्रुप हुआ जो हुआ दौरल रहा जब दगल है तो सबके हुआ खदेरी से और बोले तेज तरह टॉकिंग हेड मिस बोले कि वही में दुई मिला ऊपर से गिर गए और दोनों भैया कट उड़ गए मोड़ी उड़ में चोट लगल है। अब बोले है वेरतर प्लास से बहंदल टैक्स फोर्स मीडे वेर के सुसब के हेल्प करी से ई हैव यू फलिंग करी से बोले बाकी दोनों सलाख तो फरवन दोनों जो ने इटवा पे गिरल लाते से रॉस ब्लॉक है रातन ज्वार खवन भैया बहुत चोट आई गए हैं। शेर मुई लग बरा एक बार अप्लैक है वहाँ पे जहाँ पे जबन जाए क्योंकि हेल्प कर सके हैं। और दोनों लंडन हुए पे वो दोनों आदमी के दोनों के मौत हुई गए भैया देहांत हुई गए मर गए है। इन मिनट्स अंडर कंट्रोल है बोले हैं मेंसे दी इन ओमगेविंग सिख नोग रूरन फर्स्केलेंडे दीन्स्टन सेन इन गस्काकल जहां पे फोरेंसिस ऑफस्पोरिंग दिस भी हुआ बा और बोले ओक द हेल्प तो भैया इलीगल मरल हैगा जैसे वन दागे हुआ इटवा बिरगिया फोरे है जाय के सुनवा खोजे तो इलीगलवन दौरे है भैया सब दौरे के जाय हम सुनवा पाई और जे दौरी है भैया तो यही प्रॉब्लम हुई। दोस्तों हम चलते हैं फिहा पी के ओर। यहाँ बताए गए है तुलंजानो फोर से तरफ यहाँ पे के रहा और रहा हम लोग के चांद संतोखी रहा। तो चांद संतोखी तो आप लोग जानो अपूर्णा है तो ओकर जगह पे अंदर फोर से तर जो रहा फिहा पी के और हैगा ग्लेन उलर्स। तो ग्लेन उलर्स अंदर फोर से तर रहा। अब सब सोचे कि के फोर से तर बनी हूँ आप पे तो यहाँ आज के न्यूज़ पे है कि ग्लेन उलर्स पैर डायरेक्ट न्यू फोर्सेटर हो गए हैं फेहा पे के तो पार्टी कांग्रेस नेहन इन 2027 तक वो रहेगा। बोले फेहा पे ही ग्लेन उलर्स पैर डायरेक्ट आनखवीसन अस न्यू फोर्सेटर होफ वर्स्टीर के फोर्सेटर हैगा जब ऑल प्रेसिडेंट संतोखी ने फॉलो द ओवरलीडन पार्टी संतोखी जगह बा। अब बोले 4 तारीख मई के एगो फरखादरिंग में हो फर्स्ट भइल है फॉल्क्स द पार्टे वाज़ द फॉर एस्ट twee derde meerderheid van het aantal situatie bestuursleden aanwezig waardoor rechtsgeldig en besluit kon worden genomen. De volledig nara bestuurder maar 2/3 deel besluit kreeg ze gaan. Oor hoe besluiting was van hen kabel hega lilies om de 2/3 deel aan.
Omdat opvallend hegaan dat Oelers niet via een directe verkiezing door de partijcongres is gekozen, maar doorschuif vanuit zijn functie als ondervoorzitter. Dus ook is hem een verkieskerken bij het huisje, maar omdat de ondervoorzitter had, hoe schuif je als voorzitter. De VHP stelt dat dit gebeurt conform artikel 11 lid 5 volgens van de partijstatus Milikele. Bullet de aansluiting loopt vanuit een formele goedkeuring door het eerstvolgende partijcongres Oelers. Zal de functie uiterlijk 29 mei 2027 klikken voorzitter heen. Op die datum moeten de hoofdbestuursverkiezingen door de partijcongres worden gehouden te Pino Hoiga. Ook er waren mee, maar oor hij gaat tot en met Janneke mei 2000. 27 klinkt aan je wel als salte dat een jaar keer. Uba, toen dus toen jij ze he, ouro te aanplok ko hem, uske baren me batante hi rehege. Aanplok ko pata bhaiwaloon, bhaiyaloon, mausiloon, dadiloon, kana waima joan botia, ukar baren biete huwe hapta me. भी आप सबको हम बताए थे कि भैया जोन फिरवा हबड़ा हुए कानावाइव वेरी शर्फिस जोन है वहां पर भैया नवा राजफन बस्तीरा बैठल रहा ओकर बारे में हुआ के कम करते स्टक कर ले रहा जब मिनिस्टर फन गए ले हुआ पे तो बोले है जो बस्तूर है बोले बारा चोरी करी से तो बस्तूरवा के इन डायरेक्ट ऑन स्लाख कर दी से रखे रे बाकी उस सबके को ऑफिसर रहा जेकर नाम बा सिंथिया एंसर एंड टेनिमर मैनेजर रहा लेस्ली डैनियल फंडा कानावाइमा मैनेजमेंट कंपनी जो तार तारीख सोमवार के फिर मई के ओहू सबके ऑन स्लाख मिल गए है दैट बा फेस्टकन ब्रॉनन बेरेस्की Vaartmaatschappij in Suriname tegenover. Bolle vernomen wordt dat is het besluit ze van lezen onderzoek bij leggen. CMC John hem naar onder meer financiële बोले कि फिनांशियल चोरी करने बाटे भैया फ्रॉडेर करने बाटे और जो फ्रॉडेर करने बाटे द क्रेई के दित अलमाल में से पहले बस्तीरुआ का बोले है अने बस्तीरुआ ओंसलाग भैला अब ओकर अफिसर भी ओकर अफिसर भी यानी कि ओंसलाग हो गए है हमारे जनता और यहां और बतावे है एफएम के बोले है कमिश्नरस रातफान कमिश्नरस के बोले है और फान CMC werd 22 april ke us op ontslag bijl hè, jahan pe commissaris Rizanel Vrieze en leden Abdul Madar en Edgar van Genderen. Minister Raymond Landveld, die heeft communicatie tussen communicatie en toerisme ke gebeurde dit moreel en ethische gronden. Obole he, ik er waren corruptie raha, belang verstellende en mogelijke corruptie raha. De corruptie to hamara, desmi is ter plaats pe he, hamare janta. Dat je is ter plaats pe he. Nou, wat verwacht je eigenlijk van deze nieuws? Is een hele normale nieuws, mensen. Want je hebt zo nieuw, dat ham aanplukken betate rehe, ki yaha par corruption bhail hai wahan corruption bhail hai to ye corruption ho hai dosto to batana to hamara kaam hai lekin in Suriname is dat een hele normale saag geworden wat betreft over corruptie beste luisteraars to ye baat hai hamari janta ab dekho bhaiya ne kya bole hai Deo Sharman ka bole hoge gebouwen in Suriname vereisen moderniseren. Sering van brandweer. Bole jon purana barka gebouw he. Bole sab chahi brandveilig reke. Bole chahi moderniseer kareke. Ucha gebouw Suriname me ba. Vereisen panden die op een niveau van high-rise gebouwen waren neergezet. Deze kwestie werd afgelopen week aangekaart. Brandweer Suriname 1993 keer. In het hoogste college van staat.
waarop de parlementariër onderschreef dat de brandweer gemoderniseerd en adequaat uitgerust moest worden, willen alleen nablussingswerkzaamheden verrichten. Huizen niet verzekerd tegen brand. Bij huisbrand blijkt veelal dat huizen en panden van bewoners niet verzekerd zijn. Maar die moeten natuurlijk wel brandveilig zijn. Mensen, zo is het in Nederland ook. Mensen, het moet goed brandveilig zijn. Vooral die hoge gebouwen niet. Maar alles moet brandveilig zijn. To ye baat hai hamari janta. Aur yahan bataye bhaiya, VS, Amerika aur Iran eskaleren strijd om straat van Hormuz dono ke ladiya hoye bhaiya yahan hum log ke tel yahan pe dala se zyada ho gaye hai. Amerika aur Iran somwar ke new anfal kari se bhai in de golfregio, mensen. Terwijl Dunu Deswan verwikkeld zijn in een strijd om controle over de strategische staat van Hormuz, Dunu mange Hormuz kilewe. Ab ik kona sunio bhaiya ki orlokwa hove keran wapen ke ki mach ke ab sab kuch tel ke bare me jahen. Wan Hormuz straat jun hai oke saman ban kar le ba Dunu aur pura dunya e ma musibat me ba. De nieuwe escalatie ondermijnt een fragiel staakt het vuren en zorg voor toenemende spanning in een van de werelds belangrijkste energiecorridors. Ja, wat hij gegeven heeft. To bole anfalwa raket se hue drone se hue hai. Donald Trump bole ko nawa operatik aankondig karisega. Project Freedom ke baare mein ki freedom hue free hue. Aur ekar baare mein bole vastgelopen tankers en andere schepen weer doorgaan te bieden door de zeestraat die vrijwel gesloten is sinds de aanvallen Amerika Israël se aur Iran se februari mein ban bhail hai dosto. Aur yahan bataye gaye Amerikaanse autoriteiten werden maandag bole meerdere koopvaartdijschepen getroffen. Trump bole he weinig over project Freedom ba. Dat hij via social media aankondigde. To i bhaiya hum log ke Trump to duniya bhar ke cheez upar bole he. Ma konchi ओमा वार हुई पावे की ना होवे है. सबसे बड़का मुसीबत है कि हम लोग के तेल बन है और जब तेल बने भैया तो हम लोग के का बोले महंगा में कीने परी अरबेस डॉक्स भैया क्वेस्टी अरबेस डॉक्स के अने देख दौरान जो नहींगा अने स्टेज हेट hang ijzer voor hoe op je nu ga C47 vakcentrale in jonge Suriname bolle hega bolle arbeid minister van arbeid ke bolle vervolgens onderbrengen van dit directoraat onder andere ministerie de minister van arbeid hebben ja nog steeds een heet hang ijzer ba bolle zoals bolle bekend kregen valt arbeid nu onder ministerie van volksgezondheid welzijn en arbeid aur ekar bare mein Robbie Bierenstein bolle situatie ook nooit goed is uitgepraat met de regering. Een keertje is er even daarover met de president gesproken, maar meer niet. Bierenstein zegt dat er vanuit de vakbeweging ook worden gekeken naar wat de invloed van de beleidsbeslissing zal zijn voor de werkvloer. Ke bare mein bolle Bierenstein C47 ke. Aur dosto chikun guniya bhaiya Suriname mein bahut jyada hai tikar bare mein Raghunandan ka bole baloof kare hai ki chikun guniya blyfen chikun guniya bespuiten blyfen uit in Nikeri. Ja, bole bewoners van Nikeri aur westelijke polder bole hai ki aankondig karisega ki bespuiten tegen chikungunya terwijl volgens openbare gezondheidszorg BOG bole 24 april ke bole uitgevoerd hadden moeten zijn bole 24 april ke bole uitvoer kerit aur DNA legion hai Ravindra Gunandan bole ophelderen mange ministerie van volksgezondheid ke aur bole hega nu blijkt dat meerdere straten niet zijn behandeld aur communicatie volledig uitblijft.
बोले ढेर रास्ता बोले सब नासपोईटी करी से बोले हैं मानदन फन वाक्तन क्वामन ऑफिशियल बकेन माकर भी ओके बोले हैं ओवर गरिक्त बस्प्रुइटिंग इन ओंडर मीर फन पेतम पोल्डर एंड द वेस्टलिक पोल्डर देर का बोनस होप दैट इट आइटेंडिक एक्सी सो वन निकेरी में बहुत ढेर भी भैया जैसे परमारीवो में निकेरी में बहुत ढेर चिकुनगुनिया है आदमी बहुत बीमार है फोल्कस इन यालन ए गमेनस्कप से नीट अल अनकोंडक weken aangedaan en zijn sommige straten ondanks vermelding op de officiële route toe ik er waren met DNA lid roep hebben ook in het ministerie te Suriname met bij jou te lunjano he pura kam na hoe dunia ke de khade ki malli baati hem mamoi se je takio ta adhati ha mare bhaiya और आधा तिया ना मारे है अब देखो भैया एगो हंता फ्यूरस चलल हैगा एगो क्रूस के फैगा होंदियो इसमें और हुआ पे भैया बहुत जबर ऊ काबुल फ्यूरसवा चलल हंता फ्यूरस हैगा एगो क्रूस के पे भैया सबको या क्रूस करे तो ओके जरूर चाहे जाने के कि एगो वेर खसौत है थे सौरख है अने वेर खसौत है ऑर्गेनाइजेशन है हाउ ए रीकनिंग में कि हंता फ्यूरस जो नहींगा इंसान से इंसान बसमैत करे हैं और ये क्रूस के पुआ भर पे बा और बोटिया हैगा होंदियो इसमें और मारिया फन कैरकहोफ है एस्ट बसमैतिंग पाई जे फरमूडलक बैटन है इसके opgelopen waar de heer Fures aan boord is geïntroduceerd. Te bia betawe volgens ego deskundige bole he Maria van Kerkhoven bole ge eerste besmetting buiten boord ke bahire raha au botia hem gel te ekwon sab ke an besmet kar de se de we ha o bana de dat het nog aan een aanname gaat bole wel inmiddels bevestig kregen dat meerdere opvallende bemaar is oma. Bolle rapportage stelde organisatie dat 5 personen vermoedelijk besmet zijn geraakt. Or ja, wat we hebben, zeker is dat een Nederlandse vrouw is ook overleden mensen aan de gevolgen van de virus. Zeker he. Doden en besmettingen aan boord eerder werd bekend dat zeker 10 passagiers botia me mergen he. Luchtweginfecties he. Nederlandse echtpaar dat aan de cruise deelnam. Het is mogelijk dat zij aan boord besmet zijn geraakt. Ik ben 69 jaar geouderd. En vloog naar Johannesburg in Zuid-Afrika. Waar zij ziek werd op 26 april. In ziekenhuis overleed. Besmetting mogelijk via nou contact ke bare mein te skipua jo botia bhaiya oke samay quarantine mein le lise ga jaise virus jab hum ruke raha ane ka bole corona

0: और दोस्तों एक दो समाचार आपको हम और सुनाएंगे, उसके बाद हमारा समाचार खत्म आने को होगा। तो हम चलते भैया, एक आदमी अपन ओतो चलावत एगो ट्रेन वाहन दिखिला फौतू पे चलावत गए है, मकानी कैसे अपन ओतो लेके तुतनी का बोले है तुतली फो कनाल में गोतरों में घुस गए भाई ओतो लेके। 50 वर्ष एक आदमी भैया शनिवार के उ गए ओतो लेके गोतरों में घुस गए भैया, बस एक ग्रुप आदमी आए लोग हेल्प करे, और हेल्प का भैया हेल्प का 31,000 SR दे ऑटोमोबाइल स्वक चुरा ले से, और ओकर मोबाइल टेलीफोन ओके बरूफ करी से सब मैया। तो के कई नहीं कर बारे बोले जे तो के आ रेडिंग भल तो संबंध बोले तो के आले हेल्प करे मऊ हेल्प ना भाई उ तो के रूफ करे आवे है। तो यहाँ बताए गए है दोस्तों ऑटोमोबाइल इस बलंत में फूट तो इन कनाल एंड वर्ड बरूफ दौर द हेल्पर्स। और दोस्तों ओकर बांध में देखो 3 मेंदर यार के लंदन के छोटा छोटा लंदन 15-13-14 बरिस के सिपाही पकड़ के गए ले गए सब के सब बरूफ कर ले रहा आदमी लोग रूफ कर ले रहा मोबाइल टेलीफोन। तो इखन ओफर एगो होटल है परफॉर्म अनिमा जेका नाम बा बार्सिलोना ना न बरूफिंग स्लूखन द फरदाख्तन ऑफ द फ्लुक इन द रिक्ते लीली दौरब गए है, और वहाँ सिपाही 2 मई के उस सबके पकड़ ले से खुरुपुआ के जेमा 8 लंदन रहा dit maal wat ze slacht over beroep van een geldbedrag en vervolgens met handel. 2 van de verdachten waren daarbij gewapend met messen. Dit incident vond plaats ter hoogte van Gunpat weg mee. Toen je baant heen janta. Toen je op orde kijkt, bhaiya, bataye gaye hai. Politie jacht op 2 vervluchtigen na aanval met een messen bij Shell Vredenburg mee. वहाँ पर 2 मिला के दौरा एक पकड़ी से को 14-15 बरिस के तेन तुईड़ 2 अंदर फरदाख्तन विस्त तो अनकोमन। तो बताई गई हैगा इस 20 अप्रैल के 34-year हेबन बरूफ एंड मिसांडल, और हमारे मनोरथ बोले क्रिमिनाली तैतवा कमती हो गए। हम जाए तेरे लास्ट न्यूज भैया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो नहींगा सेलेंस्की ओ बहरेन ड्रोन डील आन खबोदन सेलेंस्की मेल ऑफ दट है द गोल्फ स्टार बसुक एंड दार अन प्रोडक्टिव गस्प्रेक हीव कहा मेरे कोनिंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा। तब बोले ओके ऊ देगा भैया अन ड्रोन आन ड्रोन सेलेंस्की रहे जिससे से बखेर फर ओलक के मिड ओस्टर फाकर ऑफ द रीक्यू गोल्फ स्टार्टन क्रीक एंड दार तमाकन में ग्रोस कालक से ईरान से ड्रोन अनफालन। बोले दिर ईरान उस सब के बोले बहुत करे है, तो यूक्रेन बोले है छत लोग के हम देबे हीव दो द ओरलक में त्रिसलन फील एरफारिंग में द इसका क्लिंग फान दर्क लेकर ऑन बमांड टू स्टेलन द प्रेसिडेंट स्क्रीव द सेलन बराइट इज द फेलेखाइज एरफारिंग टू डीलन में बहरान ओम लेफस से बस्केरमन एक है फोरस्टेल ओम एन ड्रोन डील द तीकरन द ड्रोन डी से भैया। तो यहां तक था हमारा आज की समाचार। हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार और प्यार भरे राम जोनी नंबर वन है हमारा नाम।
1: एडवोकेटन कांतोर आनंद राम सूत वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio. Radio
5: Digitale radio, waarvan FM.nl.
6: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag voor de rechter op verdenking van het doorverkopen van gevoelige persoonsgegevens aan criminelen. Sana C. zou informatie uit de rechtbankcomputers hebben gelekt die vervolgens is gebruikt voor het plegen van aanslagen. De zaak werpt licht op de werkwijze van informatiemakelaars. Dit is een groep die namens de georganiseerde misdaad gericht kwetsbare ambtenaren benadert om vitale informatie te verkrijgen. Voor de kust van het Griekse eiland Andros is vandaag een vrachtschip gezonken nadat het op rotsen was gelopen. Het schip dat onderweg was van Albanië naar Oekraïne met een lading soda raakte zwaar beschadigd, maar alle 9 bemanningsleden konden door de kustwacht in veiligheid worden gebracht. Ernstige misstanden in een universitair ziekenhuis in Zürich hebben jarenlang geleid tot onnodige sterfgevallen. Onderzoek naar 300 dossiers uit de periode 2016 tot 2020 toont aan dat er bij 75 patiënten sprake was van problematische chirurgische ingrepen. Daarnaast bleek in 13 gevallen medische apparatuur verkeerd te zijn gebruikt. En de opvang van SOS Dolfijn in Annapolona is momenteel volledig bezet door de komst van een unieke witsnuitdolfijn. Vrijwilligers en personeel zijn 24 uur per dag in de weer om het dier dat in Egmond aanspoelde opnieuw te leren zwemmen. Het dier heeft intussen de naam Albi gekregen en vertoont goede ontwikkelingen. Volgens medewerker Jeroen heeft de dolfijn voor het eerst weer zelfstandig gegeten. Dan nog het weer. Het regengebied trekt vanmiddag weg naar Duitsland, waarna de zon zich mogelijk even laat zien. Dat zal in het westen en noorden zijn. Ondanks de aanhoudende bewolking varieert de temperatuur vandaag tussen 10 graden in het oosten en 15 in het westen. Vanaf morgen klaart het op, het blijft overwegend droog en de temperatuur zal zaterdag oplopen tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: और आपको बता देती है दोस्तों हम रेडियो फाहुन के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं हमारे पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 25 और दरहाक से हम इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं दोस्तों अगर आप रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मोखलक है थे यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए यानी कि एथर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम सुन सकते हैं www.fm.nl

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

बसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों। और ये है लता जी, इसका गाना इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म, जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेख ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे, मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना द्राई करे कि हम में भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुम मुझसे यही सवाल किया था
2: क्या?
1: क्या मैं तुम्हें भूल जाऊं तो?
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला न पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुरानी गाना से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

हम चाहते हैं सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों कि कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेगी। प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारे दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए। और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोक लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है

मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आए हो। और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों जो आपके हमने सुनाया है। और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों। मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है, आप तो जानते हैं जो लोग कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है। जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है और बैठ के, और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहाँ पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है। और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार तुम्हें सोच लेता हूं। जी हां दोस्तों। और कहते हैं इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है दोस्तों तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वो होता है जो शाम को दुई बोरल मार के सोता है। एक शायर हुई के भैया ये हंसते हुए, सिर्फ प्यार भरे नहीं लेकिन हंसते हुए, नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। नजरे करम मुझे पर इतना न कर, मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इश्क के जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

बसी चुरा लिया है, और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों। और दिल बेसमैन से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो, उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो रहते हैं। अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों। और हमारे प्यारे दोस्तों, ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के, और इस गाना में, इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए, तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

रो दोस्तों, टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपके तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है, उससे बचना।

दोस्तों बारिश बन जाना कुणाल कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। कि दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहौन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबरो 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 93.5 MHz पर और नहीं कनाल 8 पर, और देहाबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं सुन सकते हैं, और वो है www.fahon.fm.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत्वास वाला मोह है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपके चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं, और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता, चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: और कृष्णा मूर्ति, कविता कृष्णा मूर्ति शान का गाया हुआ गीत है। छाया है और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों। कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है। कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम। कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज कह सकते हैं दोस्तों। कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है। और खास करके विंटर के महीना में कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों। उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए।
1: बचाने तू मुझे, क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे में यहाँ वेट।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिम नौ यानी कि जुबिन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और कास कैसे होगी दोस्तों। जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और कास कैसे होंगे, यादों में आपकी शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल है तो दोस्तों बहुत लंबा होता है कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव मैं प्रेम की दीवाना हूँ एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

और संजना आई लव यू, संजना आई लव यू हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और एस चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है और सिद्ध रात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, नेहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों, और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है, और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि, बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे। और कहते हैं मिलना इफ्तिताक था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था हमारे प्यारे दोस्तों। मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था, वो उतना ही दूर चला गई जितना करीब था। हम उनके, हम उसका देखने के, हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे हमारे यारो, जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जब उम्र लोग को, उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए, कि कहते हैं उम्र के रह, उम्र की राह में जपत बदल जाती है, उम्र के राह में जय बात बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूँ काम कर कर के रिकॉर्ड तोड़ दूँ मैं, कमबख्त पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल के ओर, शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे, फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या, मनवा कहां कहां ना लागे। दोस्तों फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका। दोस्तों और प्यार भरी प्रोग्राम यहां से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुल के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 5 20 20 4, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड न्यूरो 25 देन हाँ शहर से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है फिर भी वो हसीन है। ये तो वैसे ही है ना भाई, कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है। दोस्तों कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है, कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे झियक गई, तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो, दोस्तों दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो और करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमारे, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है, और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रावल का न्यू सॉन्ग है फन दित्यार मेंस, और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों, प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है, तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी, अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी, अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। पहले सिर्फ उसे याद करती थी, पहले सिर्फ उसे याद करती थी और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारो, रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। हम चलते हैं अनुराधा पौधवाल की ओर और सोनू निगम की ओर। आपकी याद आई तो दिल क्या करे।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे, माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जानते हैं वादा रहा सनम आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग।

रेखा से आप सुनेंगे सितारों का सफ़र। आज का प्रोग्राम है सितारों का सफ़र, में मैं गसल का गायक या गसल का फनकार पंकज उदास के बारे में कुछ बातचीत करूंगा। पंकज उदास पैदा हुआ सीफिंग में इन फैक्ट तक राजखत में, परिवार बॉम्बे से बॉम्बे चला आया और म्यूजिक अकादमी में तबला बजाने को सीखा पंकज ने। पंकज को बचपन से गाने का बहुत से शौक था। मास्टर नवरंग से ये संगीत सीखा। उषा खन्ना ने पंकज को फिल्म कामना में गाना गाने का एक मौका दिया, लेकिन ये फिल्म कामयाब नहीं हुआ तो पंकज ने फैसला किया कि वो फिल्मों में बहुत कम काम करेगा और पंकज शुरुआत किया गजल गाने में और उर्दू भी सीखा। बड़ा भाई ने कहा पंकज से कि अगर गजल में कुछ करना है, कुछ करना चाहते हो तो मेहंदी साहेब और बेगम अख्तर को सुनो। पंकज साहेब ने बहुत से पंकज जी ने बहुत से गजल पेश किया है, तो बहुत से गजल गाया है और सभी गजल में से एक गजल जो मुझे बहुत पसंद है, तेरी निगाहों से, पंकज उदास की आवाज़ में।

गज़ल का फनकार पंकज उदास कनाडा को चली गई और वहाँ जाकर उन्हें महसूस हुई कि यहाँ के लोग को हिंदुस्तानी म्यूज़िक कितना पसंद है। फिर पंकज ने मन बना लिया कि ये अपना देश में अपना नाम करेंगे और काफ़ी टाइम गज़ल सीखने के बाद ये वेसन में काफ़ी गज़ल की कॉन्टेस्ट किए नीखंतिंग तख्त और नीखंतिंग तख्त में अपने पहला गज़ल के आलबम तैयार की जिसका नाम था आहट। फिर उसके बाद वो एक गाना तैयार की एक गज़ल और वो था चिट्ठी आई है। इस गाने से ये तुरंत पॉपुलर हो गया दोस्तों। एक बार पंकज उदास एक बिने लांस फ्लिक था तो एक शो देकर घर जा रहा था और जो फ्लिक थे जब प्लेन में बैठा तो राज कपूर जी वहाँ प्लेन में बैठा था तो राज कपूर के जाकर उनका पाँव पकड़ लिया पंकज। तो राज कपूर ने कहा नहीं नहीं पंकज जी ऐसे मत करो आप एक बड़ा गायक हो। तब पंकज ने कहा नहीं नहीं मैं कोशिश करता। तो राज कपूर ने कहा आपका गीत जो है चिट्ठी आई है वो एक हिट एक बड़ा सॉन्ग हो गया है। तो वहाँ पर जाकर पंकज उदास को महसूस हुआ कि कितना तारीफ किया जा रहा है मेरा ये गीत पर। और ये गीत दोस्तों मैं सोचता हूँ ये गीत हमेशा पॉपुलर रहेगा, इसलिए गीत में जो बातें हैं मैं गीत को सेलेक्ट करके रखा लेकिन आज नहीं पेश करूँ इसलिए कि गीत बहुत लंबा चौड़ा है। एक दूसरा गज़ल मैं आपके लिए चुन के रखा हूँ और मैं भी पेश करूँगा। तो चिट्ठी आए एक पॉपुलर हिट हुआ। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ गज़ल गाया जाता था वहाँ वहाँ पंकज उदास हमेशा उपस्थित होते थे और उनका गाना भी हमेशा चलता था। पंकज उदास की आवाज़ में एक दूसरा गज़ल आप सुनेंगे। पंकज उदास दोस्तों आप जानते हैं वो सुरीनाम भी अपन शो दिया है और हॉलैंड देश में भी आकर अपन शो कितने कई बार मैं सोचता हूँ दो बार वो सुरीनाम गया है।

तारीफ है, एक तू ही धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। गसल का फंकार पंकज उदास को पद्मश्री का पद्मी मिला, यार तुई जैसन शस्त्र में पद्मश्री का ऑनर स्काइडिंग। और पंकज उदास का पिता का नाम, उसका पिता का नाम थे खुशीदास उदास, और माँ का नाम थी झूठी झीती झीती बन। पंकज को दो भाई है जिन्हें जिनका नाम है मनहर उदास, वो भी एक गायक है। और दूसरा भाई का नाम है निर्मल उदास, एक गजल गायक। और बीबी का नाम है फरीदा उदास। इन दोनों को दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिनका नाम है नयाब उदास और रेवा उदास। दोस्तों दुख की बात यह है कि 26 फरवरी 2024 को 72 साल के उम्र में पंकज उदास की मृत्यु हो गया, दुनिया को छोड़ चल गए। और बहुत दुख की बात है दोस्तों, पंकज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम जब लिया जाएगा बड़ी गर्व से लिया जाएगा। उसका दाह संस्कार परिवार रिश्तेदार के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के तमाम भी सितारे मशहूर थे वहाँ पर।

सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। महेंद्र कपूर का लाइव सॉन्ग आप सुनेंगे।

जी सायरा बानू के साथ फिल्म शागिर्द में काम किया। आप ये फिल्म देखे होंगे तो इस फिल्म एक बहुत जोक फिल्म था, इसमें बहुत हंसी था और जय मुखर्जी और सायरा बानू अच्छी तरह से इस फिल्म में काम किया। और इसी फिल्म का एक सॉन्ग है नाइटिंगेल, लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुनेंगे।

0: जॉय मुखर्जी और आशा पर सायरा बानू दोस्तों दिलीप कुमार का बीवी सायरा बानू के साथ फिल्म शागिर्द का ये सॉन्ग अभी आपने सुना। धर्मेंद्रा दोस्तों धर्मेंद्रा और अपन दूसरा बीवी, जी हाँ लोग कहते हैं दूसरी बीवी तो मैं कहा दूसरा बीवी, अपन दूसरा बीवी हेमा के साथ वो काम किया फिल्म चरस में। अभी गीत के बाद मैं कुछ धर्मेंद्र के बारे में आपसे बताऊंगा।
1: गुड नाइट।

0: दोस्तों धर्मेंद्र, आप सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र का तबीयत जो बिगड़ा, तो धर्मेंद्र अपना दयाद जो है, जितना धन दौलत है, वो अपन दो बीबियों के अंडर बांध दिया दोस्तों। तो एलक है, एलक मीन्स दोनों बीबियों का पूरा बांध दिया। और धर्मेंद्र का दौलत जो है 560 करोड़ रुपए। तो धर्मेंद्र अपना पहला पत्नी और हेमा मालिनी को दोनों को 200 करोड़ दिए। तो हेमा मालिनी को 200 और अपने पहले पत्नी को भी 200 करोड़। और अपनी चार बेटियां, धर्मेंद्र को चार बेटियां है, दो हेमा के साथ और दो बेटी है प्रकाश कौर के साथ। तो चारों बेटियों को 107 करोड़ दे दिए और 60 करोड़ रुपये। और अपना फार्म जो है, अपना फार्म हाउस जो है, वो दोनों अपने ये अपने दोनों पत्नियों में बात दिए, ये लगा। और बच्चे सोनी दियोल और बॉबी दियोल दोनों को अपना प्रोडक्शन हाउस दे दिया। और धर्मेंद्र को कई शहरों में रेस्टोरेंट है, उसका कीमत लगभग 5 करोड़ है। और दोनों भाई के हिस्से में ये दोनों, ये सभी रेस्टोरेंट जो है, ये दोनों भाई के हिस्से में आया। और धर्मेंद्र को चार बड़े बड़े बंगले हैं जो अपने दो बीबियों को बात दिए है दोस्तों। तो देखिए धर्मेंद्र अपन दो बीबियों को कितने प्यार करते हैं कि लड़कन को कम दिया है और अपन बीबी को ज़्यादा दिया है। इसलिए कि बीबी से तो लड़का होता है ना, जब बीबी नहीं है तो लड़का कैसे होगा। जॉनी तू क्या सोचे है, सही बात है कि नहीं
1: भैया? जो मशीन है ना है, वो तो कैसे चलेगा।
0: वही बात है जॉनी, थैंक यू वेरी मच।

फ्रॉम द मूवी धुरंधर से हमने पेश किया है शरारत, अभी आप सुन रहे थे। एक और गीत हो जाए इसी फिल्म से।

फ्रॉम द मूवी धुरंधर से हमने पेश किए हैं ये सुंदर सा सॉन्ग नहीं लगता दिल तेरे बिना।

0: अभी आप सुन रहे थे नयू लग दादियो तेरे बिना प्रोग्राम को हम और आगे में बढ़ाने वाले हैं। चलिए ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते।
1: Feel the music bits.
2: हम दिल के बुरे नहीं

अभी आप सुन रहे थे पॉइसन बेबी, और पॉइसन बेबी के बाद हम पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी दिले प्यार डे। इसी फिल्म से, यानी दिले प्यार डे जो, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं झूम शराबी।

0: डेरे प्यार डे टू है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हमने पेश की है झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम बिजली। ये गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, चलिए मिलकर सुनते हैं।
1: सुनो सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने, आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

अभी आप सुन रहे थे बिजली, और बिजली के बाद ये सुंदर सा सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी सुनने वालों के लिए।

ये सॉन्ग के बाद हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते बेबी तुझे क्या लगेगा पाप लगेगा फ्रॉम द मूवी सरा हटके सरा बचके।

0: नमस्ते मैं सारा।
1: अभी आप सुन रहे थे बेबी तुझे पाप लगेगा। चलिए ये सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, दिल तेरा है।

अभी आप सुन रहे थे दिल तेरा है, परम सुंदरी इसी फिल्म से द टाइटल हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

फ्रॉम द मूवी परम सुंदरी से द टाइटल हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते, सिकंदर है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए।

अभी आप सुन रहे थे सिकंदर नाचे नाचे, और ये सॉन्ग के बाद हम पेश करते हैं एरा गहरा फ्रॉम द मूवी कलंक।

अभी आप सुन रहे थे एक बैठक गाना मैशअप द टाइगर्स, यानी इस ग्रुप का नाम है द टाइगर्स। हरीश सुखदेव आपको सुनाने वाले हैं एक और मैशअप। चलिए मिलकर सुनते हैं।

हरीश सुखदेव जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे एक मैशअप सुनने वालों। सोनिया सिंह आ रहे हैं प्रोग्राम में गिलबा का ग्याल।

सोनिया सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे गिल्बा का ख्याल। लीला एम आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों, और लीला एम जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, अब चोलिया भीजे।

अभी आप सुन रहे थे अब चोलिया भीजे पसीन बनवारी, लीला एम आपको सुनाने वाले थे। मलेसा सिरपौल आ रहे हैं प्रोग्राम में साइड चेक।

0: What's this smart?
1: Where's what?
0: What's this here, so? Explain, Mark. Let me hear.
1: I can tell you the truth. You sitting? I had emergency.
2: अभी आप सुन रहे थे मलेसा शिपोह की आवाज में साइड चेक रसिका दीनदयाल आ रहे हैं प्रोग्राम में बोले बोले हिरनवा

बोले बोले हिरनवा हमको न मार, हमको न मारो जंगलवा में, रसिका दीनदयाल आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं। सुनने वालों, पृथ्वी आ रहे हैं प्रोग्राम में, श्याम सुंदर।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर पृथ्वी की आवाज़ में। केनेथ सालिक आपको सुनाने वाले हैं राधिका वायुली वेंगो।

आपका हैप्पी स्टेशन फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। काम जो आपको रेडियो के सरे कराना है, कॉन्टेक्ट कीजिए फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो से। हे अपना बनाने की कसम खाई है, मिस्टर सानू एंड अनुराधा पौडवाल दोनों के आवाज़ों में आप गीत को सुनेंगे।

फिल्म सदक का सॉन्ग तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। संजय दत्त और पूजा भट्ट फिल्म में काम किया। संजय दत्त दोस्तों बीते हुए दिनों में ये आदमी जेल यात्रा, इसे मैं अच्छा कहा जेल यात्रा या जेल कातिल, कोई बात नहीं, ये जेल गया और ये फिर वापन खफालक था। तो कई महीना ये जेल, लगभग 8 महीना ये जेल काटा। लेकिन उन दिनों में सलमान खान इनका बहुत मदद किया, संजय दत्त का मदद उन दिनों में सलमान खान बहुत किया। अब की बार धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना मिस्टर सानू वंस अगेन, लेकिन अब की बार नहीं एक बार फिर अनुराधा पौडवाल के साथ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना।

रुलाना हर किसी को आता है, रुलाना हर किसी को आता है और हंसाना भी हर किसी को आता है, मगर रुला के जो मना ले वो बाप होता है, और रुला के जो खुद रो पड़े वो सिर्फ माँ होता है। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई साथी चाहिए।

भरी उदास है जिंदगी, कोई साथी चाहिए। साथी किस तरह से मिलेगा दोस्तों? हम लोग के तो हिंदुस्तानी लोग को यहाँ पर रेज पिरो है, फ्लेश वेंकल है, तरकारी दुकान है, कपड़ा दुकान है, लेकिन हिलक्स बिरो मुझे पता नहीं है या नहीं। अगर होगा दोस्तों तो आप फाउन हिंदुस्तानी से कॉन्टैक्ट करके और प्रचार कीजिए, ये हिविलेज ब्यूरो के जरिए साथी ज़रूर मिल जाएगा आपके करीब। आपके करीब हम रहते हैं।

दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी बड़े जतन से कमाई है। इसमें रफ्तार तो भरपूर है, इसमें रफ्तार तो भरपूर है, पर ना ठहराव ना गहराई है।

वास्तव में जब दिल लेना है तो दिल फिर देना पड़ेगा। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। बात में सोचता हूँ कि ये सही हो गए, लेकिन जो गीत मैं पेश करूँगा वो है ये आंखें है आईना मेरी जिंदगी का।

कोई मेरे दिल में है, मुझे तो ये एहसास नहीं होता है कि आपको एहसास है कि कोई आपका दिल में है। मैं सोचता हूँ अगर होगे तो आपको जरूर एहसास होगे। कोई मेरे दिल में है, अनुराधा पौडवाल एंड मिस्टर सानू।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इशहार करे किसी और से, खुदा करे जिसे इशहार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या होते रे वादा धड़ बड़े गिर ब्रोकन हर सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, मैं राही भटकने वाला हूँ क्या जाने मटवाला हूँ, माइटी मुकेश की आवाज़ में।

चेहरा ही भटकने वाला हो, कोई क्या जाने मतवाला हो। भाईटी मुकेश की आवाज़ में भी ये गीत को सुन रहे थे। आइटम जारी है दोस्तों, यह प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है और अब की बार फिल्म जेवल तीफ का एक गीत है, रुला के गया सपना मेरा, नाइटिंगेल लता की आवाज़ में।

हंसी एक नगमे, हंसी के नगमे गाते रहो, हंसी के नगमे गाते रहो, वक्त निकाल कर मुस्कुराते रहो। क्या ज़रूरी है अब सर झुकाने को, क्या ज़रूरी है अब सर झुकाने को, जब तुम मेरा साथ न दे सको।

खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। पर जिंदगी, जिंदगी तो वो जीता जिसको खुद पर विश्वास है।

आरंभ होता है सितारों का सफ़र, और सितारों का सफ़र के प्रोग्राम में आज शाम को मैं रणबीर कपूर के बारे में कुछ बातचीत करूँगा। रणबीर कपूर, पिता का नाम ऋषि कपूर और माता का नाम नीतू सिंह कपूर, पैदा हुआ 28 सितंबर 1983 मुंबई इंडिया में, शादी किया आलिया भट्ट के साथ यार तुई जैसन तुई में। रणबीर कपूर के घर पर हमेशा प्रॉब्लम झगड़ा होते रहते हैं पिता माता से, तो इसलिए रणबीर कपूर पिता से बहुत दूर रहता था, पिता से बहुत कम संबंध था रणबीर कपूर से। लेकिन बात यह हुआ कि रणबीर कपूर पिता के साथ असिस्टेंट फिल्म आ अब लौट चले में काम किया, और उसके बाद ये दोनों का प्यार फिर मिल गया और बाप बेटा दोनों फिर प्यार से जीते थे। रणबीर कपूर फिल्म शौर्या में असिस्टेंट का काम किया, और असिस्टेंट का काम किया बनिया लीला के साथ असिस्टेंट का काम किया। उसके बाद पहला फिल्म तुई जैसन सीफ में फिल्म शौर्या में आया। तुईसन दैरथिंग का फिल्म ये जवानी है दीवानी, ये इंडिया बॉलीवुड का एक फिल्म था जो सबसे ज़्यादा नफा अंदर लाया, सबसे ज़्यादा पैसा अंदर लाया। रणबीर कपूर का एक फिल्म का सॉन्ग मैं पेश करूँगा, फिल्म बर्फी जो भी एक हिट फिल्म निकला उसी फिल्म का सॉन्ग आप सुनेंगे।

रणबीर कपूर, रणबीर का कपूर का कहना हुआ कि उसका फिल्म जो त्रिवेंद्र सिद्धार्थी में बना ये जवानी है दीवानी, ये सबसे बड़ा फिल्म जो आतिलक को बनाया इस फिल्म है। उसके बाद फिल्म रंजीता, वो भी एक बड़ा हिट फिल्म था जिसमें बड़े बड़े एक्टर ने काम किया, जैसे कि अजय देवगन, नाना पाटेकर, अर्जुन रामफल और कैटरीना कैफ। रणबीर कपूर दोस्तों एक कपूर परिवार, कपूर का फिल्म दुनिया का बड़ा परिवार कपूर का एक लाइन्स हूँ जैसे हम कहते हैं। तो ऋषि कपूर फिल्म एक्टर था पिता, माता भी फिल्म एक्ट्रेस था। अब रणबीर कपूर इंडिया बॉलीवुड का एक टॉप एक्टर है। बात यह है दोस्तों कि संजय दत्त एक फेस था, एक त्यौहार था, एक पार्टी था, तो वहाँ पर रणबीर कपूर बैठा था और संजय दत्त आया अंदर। फिर रणबीर कपूर को कहा कि आपका चाल स्वभाव जैसे लगता है तो आप एक्टर का कामिल नहीं हो, एक मानल का रोल, एक मर्द का रोल आप नहीं अच्छी तरह से अदा कर रहते हैं और नहीं कर पाओगे। तो रणबीर कपूर को इस बात से गुस्सा हुआ दोस्तों, और हमेशा जब रणबीर कपूर को प्रॉब्लम होते थे तो पिता के पास जाते थे ऋषि कपूर के पास। तो ऋषि कपूर ने जाकर बातचीत किया संजय दत्त से और वहाँ से फिर आपस में लोग मिल गया। लेकिन एक दूसरा बात और है, एक पार्टी, एक क्लब में पार्टी था और वहाँ पर सलमान खान बैठा हुआ था और रणबीर कपूर अभी फिल्म में काम नहीं करते थे, लेकिन पिता एक पॉपुलर एक्टर था तो इसलिए रणबीर कपूर जहाँ जाते थे तो वहाँ बड़े बनकर बैठे थे और बड़ा बड़ा बात करते थे। तो बात क्या हुआ दोस्तों, रणबीर कपूर और सलमान खान दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सलमान खान रणबीर कपूर को एक लपड़ एक झापड़ मारा दोस्तों। तो रणबीर कपूर तुरंत घर पर गया, पिता से कहा कि देखो ऐसे से बात हुआ। ऋषि कपूर ने रणबीर कपूर के साथ तुरंत गया सलमान खान के घर पर और सलमान खान से कहा आपने क्या किया। सलमान खान ने कहा भाई ऋषि जी, मैं नहीं जानते थे कि आपका बेटा है। तुरंत पकड़ कर रणबीर कपूर को गले लगाया और कहा कि आप मेरा बेटा हो, ये कैसे हो सकता है। तो ये दो बातें दोस्तों आपको ख्याल रखना चाहिए कि बात यह है कि बहुत से लोग हैं जो फिल्म एक्टर का परिवार होते हैं तो जहाँ जाते थे तो अपन हड़ताल करते थे। और वैसे भी संजय दत्त का चाल स्वभाव जो है तो आप जानते हैं किस तरह से। एक सॉन्ग हम सुनेंगे फिल्म रॉकस्टार, रणबीर कपूर का फिल्म।

रणबीर कपूर। रणबीर कपूर का रिलासी या प्यार मोहब्बत था दीपिका के साथ, उसके बाद कतरीना कैफ के साथ 6 साल तक लोग ये दोनों साथ थे और बड़े बड़े फिल्मों जैसे ने जो काम किया, जैसे कि फिल्म रॉकस्टार, बर्फी, रंजीता, ये जवानी है दीवानी। रणबीर कपूर को 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, फिल्म सवारिया, फिल्म कहानी, फिल्म रॉकस्टार, फिल्म बर्फी और फिल्म संजू में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रणबीर कपूर का बड़ा स्पोर्ट है फुटबॉल दोस्तों, और ये आन फूडर है ऑल स्टार्स फुटबॉल क्लब का। और वैसे तो रणबीर कपूर दो नासी स्कैंकिंग देता है मिली और खानी शास्त्री को, बहुत से स्कैंकिंग देता है। रणबीर कपूर मुंबई में रहता है अपन बीबी आलिया भट्ट के साथ दोस्तों। और यहाँ तक था रणबीर कपूर का छोटी सी कहानी।

स्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हरिओम। एकदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों। हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर से भरा हुआ प्यार, नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णाजत भगवान दीन, जिसे आप ढेर सारे श्रोतागण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम सेस मई 20 का यह सीन रात्रि का प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूँ साथियों। ये यशा उम्मीद लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को पसंद आएगा। जहाँ पर भी हो, जिस साल में हो, घर पे हो, या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, या तो काम कर रहे हो, जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का, ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है। मैं थेल फील लॉइस्टर प्लेजीर के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस्तेमाल इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना चाहते हो यारो, तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फरमान डॉक्टर फ्रेडा van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags kunt u op de volgende telefoonnummers bellen: kantoor 070-365-2247 of Studio Katarka nummer 070-362-2077. क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं यारो। एनी टू वर्गेटे ऑनस क्वालिटेट इज ऑलवेज योर गारंटी, एंड नेचुरली नेचुरली नेचुरली फूलत यू सिच ऑलवेज लेकर दरबाई फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुना, जो खास करके द मैन विद गोल्डन वॉइस फ्रॉम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो माइस्ट्रो राजन द्वारका जी ने आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया। इस तौर तरीके से भाई राजन जी हमेशा की तरह सदियों से आप सभी को सेवा करते आ रहे हैं। यह आशा उम्मीद है कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज रात्रि के लिए तहे दिल से धन्यवाद भाई राजन जी, और आपको भी हमारे फूड टीम की तरफ से आपको भी एक शुभ रात्रि। अगर आपके घर पे खुशी का दिन जश्न मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हो, या तो विवाह संस्कार की तैयारियां में भी लगे हो, ये भी हो सकता है ना। जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की फुल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां, खुशियां ही खुशियां, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। हरिओम। तो बीमार लाचार या आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, और जिसके घर पर एक दुख है, गमी है, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो आपने फुल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। बीमार है फन हार्ट बेहतर खाप, जल्द से जल्द आप चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए। नित प्रखेत जिंदगी के मजे रोजाना लेते रहना बंधु, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना, और थोड़ा बहुत हम लोगों के बारे में जरूर बातें चाते करते रहना है। फन हार्ट बेहतर खाप कामयाब हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां। फ्रल खाने सो खुद दौर है, और हो सकता है कि आज या कल आप कामयाब नहीं हुए हो या परसों, तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु। दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास भरोसा यकीन थोड़ा और जोर तो से सेल्फ फर्ट्रोव बढ़ाते रहना,
और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना, तो हो सकता है कि कामयाबी भी जल्द से जल्द आपके कदमों को भी आकर चूम सकते हैं। मुखलक है ना, देखो मेहनत तो है दौलत का यारी यारो, नो इट ऑफ है अब ओवरऑल क्लियर थे टाइम्स ऑफ स्टार्ट ऑफ योर वर्क नेवर गिव अ ब्रदर एन असिसा सो सो लुबी लुबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बिडंक्ट फॉर इट लिसन प्रवेश हुए तुम्हारे फूल टीम की तरफ से सुस्वागत तुम फेन वकांसी ब्लैक फ्लैश रेनार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो यू गोना लाइक इट एंड दैट मीन गो। और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, तो आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ यात्रा फेन वकांसी। तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को इंटरनेट के लहर द्वारा और फिर वकांसी एड्रेस, तो आप भी सुनिए हम लोगों को इंटरनेट के लहर द्वारा उपयुक्त टैबलेट स्मार्टफोन ऑफ लैपटॉप सो बेंटी एंड ब्लेफ्टी फॉर नॉलेज ऑफ द होक्त फनी उरा फाफोरी तरह दिवस था ने दैट इज नतीलक हमारे दनहा शहर का द वन एंड ओनली फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुरु। साथ ही प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान फ्रॉम द मूवी ललकार ने खड़ी तो ये सीखते कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी कि आज गा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा या कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते रहते हैं और सदा कहते ही रहेंगे ना कि हैव टू नस्ट आउट इट लीफ बंधु कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है ना, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप साप्ताहिक प्रोग्राम सुनेंगे गीत और गजल ओथ इज गोथ खलिंग मैथ संगीतकारों का दास्तान नाम कार्यक्रम जो मैं तकरीबन 11 साल से ऊपर हो गया है आप सभी को हर बुधवार रात्रि को कोशिश करता हूँ सुनाने को, कुछ पुराने नगमे कुछ संगीतकारों के बातें लेखकों के बातें गायकों के बातें और साथ ही साथ पुराने पुराने नगमे बीच में कुछ ज्ञान के बातें शेर शायरी भी है। कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 10:30 रात्रि तक चलेगा साथियों, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना और आप सभी के लिए हमेशा की तरह रफी साहब जी के मधुर आवाज में ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान

मुस्कुरालो महफिले सजालो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत रफी साहब जी के मधुर आवाज में। तो साथियों, आज का इस हसीन रात्रि का प्रोग्राम जो आप सभी के नाम है, मैं शुरुआत करने वाला हूँ एक बहुत ही पुराना फिल्म से निकाला हूँ ये नगमा, और लाते हैं हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सरस्वती माँ, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी की आवाज़ में आप ये अति सुंदर बयान सुनेंगे। एक पुराना मूवी खेल 1950 देवानंद जी का ये सुपरहिट मूवी। लेखक इस नगमा का है सागर निजामी जी, और म्यूजिक सजाया और धुन बनाया है महान संगीतकार उस जमाने का डिग्रेट सज्जत हुसैन जी। मिलकर सुनते हैं लता जी के ये ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

रिदम क्वीन ऑफ मेलोडी हमारे भारत देश का सरस्वती माँ अश्विन, अति सुंदर और दर्द से भरा हुआ बयान कि जाते हो तो जाओ हम भी जहां वादों के सहारे जी लेंगे। एक फिल्म खेलने की तेरा मिनट गुजरने वाला है, 8:07 साथियों आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम संगीतकार का दास्तान नाम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। अगला बयान एक पुराना मूवी भाई भाई 1956 एक बार फिर भारत रत्न लता जी, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, ब्यूटीफुल सॉन्ग पिक्चराइज किया गया है अब निरूपा रॉय जी, और इस फिल्म में किशोर दा और अशोक कुमार जी दो भाइयों का रोल बहुत ही खूबी से अदा किए हैं।

0: die zonder bejaan uit de film Bhai Bhai 1956. Bharat Ratna Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji ke beautiful awaaz mein. Mamun Hindustani Radio pe aap tune hai saathiyo, ghadi ki taraf dekhta hu to 18 minute guzar chuka hai, 8:05. Agla bayaan ek beautiful song hai ai the film Kali Billi Black Cat. महान संगीतकार उस जमाने का एन दत्ता जी के बनाया हुआ ये थी सुंदर धुन लिखा गया है यान निसार अख्तर जी के जरिए और गाए हैं क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी और भा द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी के आवाज़ों में. आप सुनिए मैं तुम्ही से पूछती हूँ
1: इकरार करे

फ्रॉम द मूवी ब्लैक कैट। और देखा जाए कुछ अल्फाज आप सुना रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में, कंपोज बाय म्यूजिक डायरेक्टर एन दत्ता, और लिखा है उस जमाने के मशहूर लेखक द ग्रेट जान निसर अख्तार जी। अगला बयान, हाथों में किताब बालों में गुलाब, क्या बात है सुनाने वाले हैं आप सभी को संगीतकारों और संगीत प्रेमियों का बादशाह और शहंशाह संगीत के महान ज्ञानी, और क्या क्या ये महान कलाकार हम लोगों के लिए क्या है, जितने तारीफ किए जाए कम है। वत कौन है नीत सिंह अख्तर स्क्राइफ म्यूजिक मार्क रेजिसेर द फिल्म ऑप्टिमम द वन एंड ओनली हसीनो का पुजारी किशोरदा के ब्यूटीफुल आवाज में फ्रॉम द मूवी संसार 1971। उस जमाने के महान संगीतकार द ग्रेट चित्रगुप्त के साक्ष पर

मेरी जान इरादा क्या है, हसीन का पुजारी की शोरदा के जबरदस्त आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एथ द फिल्म संसार 1971 कंपोज एंड अरेंज बाय मास्टर चित्रगुप्त। एक मिनट बाकी है साथियों 8:30 बजने में, एक और जबरदस्त सॉन्ग मैं रख चुका हूँ प्लेयर में आप सभी को सुनाने को, और इस बार एड फिल्म जाने मन 1977 सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी एक बार फिर रफी साहब जी साथ दे रही है, उस जमाने के नाइटिंगेल द ग्रेट हेमलता जी, और लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस जमाती मुकेश जी भी इस गाने में कुछ अल्फाजे सुनाने वाले हैं आप सभी को। इस मुलाकात का बस मजा लीजिए साथियों।

0: आना चाहिए।
1: इशारा कर रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ, मगर मैं

मगर मैं डर रहा हूँ क्योंकि क्योंकि क्योंकि इशारा कर रहा हूँ मगर मैं डर रहा हूँ देखो रंगे महफिल ये दिल है।

0: दुल्हन दुल्हन बनी है प्रीत दुल्हन दुल्हन बनी है प्रीत दुल्हन जमा है दोस्त दुश्मन तो मजा लीजिए
1: मजा लीजिए
0: तो मजा लीजिए।

0: रजनी का जान खतरे में आओ, रानी मास्टर का जान खतरे में आओ, तो और टैक्सी ड्राइवर भाई का जान खतरे में आओ।
1: बहुत बेचैन हम हैं, बहुत बेचैन हम हैं, बगल में शेर कम है, नहीं उस्ताद।

नगर जब तक के दम है।

होगा, दिलों का मेल होगा। मजा दीजिए दीजिए दीजिए।

आइड फिल्म जाने मन लक्ष्मीकांत प्यारे लाव के सांच पर। तो साथियों वक्त हो गया है कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ पढ़े लिखे लोगों, कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने जिंदगानी के बारे में अति सुंदर सुंदर बातें लिखी है साथियों, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये यशोमी लेकर कि हमेशा की तरह इन बातों से कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। दूसरा गौर फरमाएं, अर्ज किया है बहुत ही पुराने जमाने का विद्वान एक चाइनीज फिलोसोफ श्री कॉन्फ्यूशियस जी ने, है 1 फोर क्रिस्टस। और कॉन्फ्यूशियस जी ने जिंदगी के बारे में कहा है साथियों की, वी मेट मेंस इन ओंखाट अस मेट पियोनन सीट स्पुडग दट सेन शाकबोर्ड लीग इस क्लॉट अस एन बस। आगे में कहा है श्री कॉन्फ्यूशियस जी ने, फोटन हैवन एंड दी नीट फरबेटरन दट इस पास फोट हैवन। आगे में कहा है कॉन्फ्यूशियस जी ने, ट्वेफल इज द वाक हुंड फन हेट इनसिक्ट फ्लेयरी एंड ग्लट फन टोंग सेन वेजन जेल्डन ऑफ एन ऑपरेक्ट मेंस इंच ऑम द ऑन्ट होल्डन साथियों। एन मोमेंट फन फ्रुग्द वर्ड्रेव्ड 100 सोर्गन क्लॉप ओक हिल हेलमाल वार। De morele mens houdt van zijn ziel, de gewone van zijn bezit. Blijf liever de morele mens, hè? De meester zei, alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening. Van nature zijn we broeders, door de opvoeding worden we vrienden. Weten wat men weet en weten wat men niet weet, dat is het ware weten. En de laatste van vanavond, hij Sri Confucius Jineki, als ge een goed mens ziet, bedenkt dan hoe ge hem kunt navolgen. Als ge een slecht mens ziet, onderzoek dan uw eigen hart. तो साथियों भी आप कुछ ज्ञान के बातें सुना जो जिंदगी के बारे में जाता है और सुनाने वाला था श्री कॉन्फ्यूशियस जी ने, एन चाइनीज फिलोसोफ ही लिव्ड इन द ईयर फॉर क्रिस्टस। ये जो उम्मीद लेकर इन बातों को मैं आप सभी तक पहुंचाया कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और एक अति सुंदर धुन आप सुनेंगे जो बनाया है उस जमाने के महान संगीतकार द ग्रेट चित्रगुप्त फन ब्रूप वॉस है डॉक्टर लेरार एन कॉम ओ फन एन वेल स्टेल्थ फैमिली मार ओम दट है सो खुद म्यूजिक कन माक कौन माक कॉम्पोनेर हिफ्टी टॉक फॉर बॉलीवुड गोस द ग्रेट चित्रगुप्त के साज और संगीत पर आप सुनेंगे एक बार फिर भारत रत्न लता जी और इस बार पद्मश्री महेंद्र कपूर जी के साथ। बहुत ही मीठा धुन, जरा संभालिए अदाएं आपकी।

A masterpiece of composing by maestro Chitragupt. Ati Sundarbiane Sunaya Apasiku Lataji aur Mahendr Kapoor ji ne milk aur yati sundar bayan ko dekha jaye film Bada Aadmi Hona Chahiye. तेरह मिनट बाकी है साथियों, नौ बजने में, और अब आप जरा दिल को थाम लीजिए क्योंकि आप सुनने वाले हैं एक जबरदस्त सॉन्ग ओक कॉम्पोनेट दोर डॉन एंड ओनली मैस्ट्रो MNM द ग्रेट मदन मोहन जी, और गाने वाला है मनन जी का फेवरेट सिंगर सुरों का बादशाह रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में हर सपना एक दिन टूटे ऐद फिल्म कैसे कटेगी जिंदगी. ये दोनों रफी साहब और मदन मोहन जी ने जितने धुने बनाए हैं और रफी साहब जी ने गाए हैं फिल्मों में या तो नॉन फिल्म से, सब भी सुपरहिट साबित हुए.

क्या बात है, कभी कभी टूट जाता है सपना और कभी कभी बन जाता है ये सपना, ये भी होता है जिंदगी में साथियों। रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में आई जो फिल्म कैसे कटेगी जिंदगी, कंपोजर अरेंज बाय मास्टर मदन मोहन, अति सुंदर बयान। 6 मिनट बाकी है 9 बजने में साथियों, तो आज का इस पहला अध्याय संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम में रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे, उसके बाद विज्ञापन होगा। मैंने 100 बार ख्यालों के बनाया खाक, ये भी होता है महान संगीतकार नेत्रहीन संगीतकार ऑन्स ब्लाइंड म्यूजिक डायरेक्टर द ग्रेट रविंद्र जैन जी का बनाया हुआ अति सुंदर बयान और धुन, लिखा है नक्स लियाल पुरी जी ने और सुनाने वाले हैं आप सभी को द ग्रेटेस्ट मोहम्मद रफी साहब जी।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम सेस में 20 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 4 मिनट गुजर चुका है 9:00 साथियों, हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सो लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू अनतिलक बदंत फॉर हेट लॉयस्ट्रेन। तो जो भी रेडियो का काम होना खास फरमाई से जरूरी खबरें इश्तिहारे डेंक ऑन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, इश्तिहारे हो, फरमाई से हो, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, शोज या इवेंट आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट कर रवाना यारो, तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। ये बात मैं आज श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तमाम लोग फाहन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार बैलेंस ऑफ द ईस्ट पास, सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें टेनेंस कंटोर उर फन मांडाग टॉट फ्रेडाग ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 07-363-2247 और स्टूडियो कतार का नंबर है 07-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना डेंक ऑन फाहन हिंदुस्तानी रेडियो, यू बैंड फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रेक्लाम बनाते रहना, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो बिनती गुजारिश निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और ओ को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। रिसेंट है वो ओक उनसे एक कारा ओक टीम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कारा ओक टीम भी है जिसमें स्टुक ऑफ 8-9 सांगर्स सांगरेस दी फॉर यली वेकल्स अमरूप ओक अनंत सिंह जैन। जोर तोर से हम लोग अभ्यास कर रहे हैं यानी उफन कर रहे हैं आप सभी के लिए। एंड नेचुरली बी रिकॉर्ड फॉलो ऑन सोशल मीडियाज एंड ऑन सम रूपर्स द होती सेट सही कर बने रही ऑन स्कान कोम कोम लाइस्टर है एंड खनीत फन द मोय स्टेम दी लाइफ फॉर यू लिखा सिंग फॉलोअर्स है। तो जरूर आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर है और मेंबर बने और इन जो जो छोटा सा मोटा सा फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का फैमिली बन चुका है ना और बनते जा रहे हैं, आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 07-365-2027 एंड फ्राग नार उनसे टीम लीडर फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द वन एंड ओनली माएस्ट्रो जॉनी नंबर वन। के मुताबिक एक हीदम बढ़ते हैं प्रोग्राम के तरफ साथियों, और बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म इश्क पर जोर नहीं है। हाँ हाँ, अब आप लोग सुनेंगे नगमे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है, और फिल्म इश्क पर जोर नहीं है रिलीज किया गया था 1970 तक। महान संगीतकार सचिन देव बर्मन जी के साथ है और गाने लिखे है आनंद बख्शी जी ने। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है मलकाय हुस्न द ग्रेट साधना जी के साथ। महान हीरो द ग्रेट विश्वजीत ने कुछ रोल्स भी अदा किए हैं इस फिल्म में, नजीरा है और जगदीप भी इस फिल्म में। तो फिल्म इश्क पर जोर नहीं है 2 नगमे रह गया था सुनाने को जो मैं
आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं। प्लेयर में रख चुका हूं, प्यार भरी एक बात चली, द क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल फ्रॉम द इंडियन पॉप म्यूजिक, हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का नाम लेता हूं तो हिल जाता हूं, क्योंकि ये दिस नॉट फेयर है। आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में एस डी बर्मन के साथ पर मिलके सुनते हैं ये अति सुंदर बयान कुछ डायलॉग्स के साथ।

0: मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बलवान होता है। ललित
1: बाबा के प्रणाम पर

अति सुंदर बयान कुछ डायलॉग्स के साथ आप सुने आई डू फिल्म इश्क पर जोर नहीं 1970 और ये अति सुंदर बयान सजाया है एस डी बर्मन जी ने लता जी के लिए आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में। 17 मिनट गुजर चुका है 9:00 साथियों और आप चुन हैं आप ही का हैप्पी स्टेशन पर देन हाँ शहर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस और नगमे चल रहे हैं फिल्म इश्क पर जोर नहीं और ये भी आखिरी बयान इट द फिल्म मैं तो तेरे रंग रती। एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी एस डी बर्मन के सांच पर। एस डी बर्मन क्या बात है, महान संगीतकार उस जमाने का, द फादर आर डी बर्मन जी का। और लिखा है अति सुंदर बयान को द ग्रेट आनंद बख्शी जी ने, ब्यूटीफुल सॉन्ग।

Beautiful song, Maito Tere Rang Rati. Aakhri bayaan uit de film Ishq Par Zor Nahi. 1970, S.D. Burman ji ke saaj par sunaya aap sabhi ko Bharat Ratna Lata Mangeshkar ji. 22 मिनट गुजर चुका है साथियों, 9 बजकर बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गीत और गजल ओल्डीज गोल्ड नामक कार्यक्रम, और नगमे सभी फिल्म इश्क पर जोर का आप सुन चुके। तो अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो रिलीज किया गया था 1971 में, फिल्म रखवाला। कल्याण जी आनंद जी भाइयों का संगीत है और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है, मलकाय हुस्न द ग्रेट लीना चंदा वाडकर जी के साथ। महान संगीतकार जोड़ी तो आप सुन रहे हैं, सुन चुके। लेखक है राजेंद्र कृष्ण और इंदिवर। तो फिल्म रखवाला से आप नगमे सुनेंगे। अगला बयान, रहने दो गिले सिकुए, हमेशा की तरह हसीन जोड़ी जो कितने गाने हम लोगों को सुनाए, कितने ड्यूएट्स रवि साहब और आशा भोसले जी मिलके सुनाते हैं ये अति सुंदर बयान कि रहने दो गिले सिकुए। ऐ दू फिल्म रखवाला।

Beautiful duet aap Srotao ne suna uit de film Rakhwala 1971. Composed by the brothers Kalyan Jiyananji. Aur Ravi Sahab ji aur Asha Bhosle hamesha ki tarah itne meethe meethe gaane hum logo ko diye. 3 minute baki hai saathiyo, 9:30 bajne mein agla bayan ki taraf badhte hai. Aur ye ati sundar bayan aap log to वीकलिक्स रेडियो पे सुनते रहते थे. सुरीनाम देश में बहुत ही लोग मांगते थे, खास करके फरमाइश शादियों और विवाह संस्कार के उपलक्ष्य में. मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया. मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय द ब्रदर्स कल्याण जियानंदजी ऑफ द फिल्म रखवाला. लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम.

तू साथियों, कुछ वक्त हो गया है ना, वही वक्त हो गया है हमारे शेर शायरी के कुछ यादें हैं जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। कुछ ताजे ताजे भेजे हैं लिख के भाई भूपेंद्र जी। अर्ज किया है साथियों की मोहब्बत को जो निभाते हैं उनको मेरा सलाम है, और जो बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं उनको हमारा ये पैगाम है, वादा ए वफा करो तो फिर खुद को फना करो, वरना खुदा के लिए किसी की जिंदगी ना तबाह करो। मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, तो कोशिश जारी रहे। चलो बिखरने देते हैं जिंदगी को, चलो बिखरने देते हैं जिंदगी को, संभालने की भी तो एक हद होती है। वक्त लेता है करवटे ना जाने कैसे कैसे, वक्त लेता है करवटे ना जाने कैसे कैसे, उम्र इतनी तो नहीं थी जितने सबक सीख सीख लिए हमने। विश्वास बन के लोग जिंदगी में आते हैं, ख्वाब बन के आंखों में समा जाते हैं, पहले यकीन दिलाते हैं कि वो हमारे हैं, फिर ना जाने क्यों बदल जाते हैं। याद भी क्या खूबसूरत चीज बनाई है खुदा ने, याद भी क्या खूबसूरत चीज बनाई है खुदा ने, ये कभी भी कहीं भी आ जाती है, इसलिए तो इसे यादें कहते हैं ना, याद। तो साथियों, ये था कुछ शेर्स हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा और कुछ सुनाने को। 5 मिनट व्यतीत हो चुका है 9:30 और आप चुने आप ही का हैप्पी हैप्पी स्टेशन हमारे दिनाशर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे, और नगमे चल रहे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता दिग्विजय धर्मेंद्र जी ने काम किए हैं, और हम पहुंच चुके हैं फिर हम रखवाला तक जो रिलीज किया गया था में। अगला बयान एक बहुत ही हसीन दुएत है, एक बार फिर लता जी और रफी साहब जी के आवाजों में, कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, एक जबरदस्त सॉन्ग है, एंजॉय द म्यूजिक साथियों।

सुंदर बयान तेरी नैन मेरी नैन देखते रहे ऐडू फिल्म रखवाला। लता जी और रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाजों में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी। पूरे 20 मिनट रह गया है 10 बजने में साथियों, और आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी।

अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और ये भी एक सुपरहिट सॉन्ग है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं इन सीनों तक से साप्ताहिक और हफ्ते में भी कितने बार रेडियो रापार रेडियो राधिका सहबदित निर्मर है लमाल फर्स लेते भैया। एक बार फिर लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में फ्रॉम द मूवी रखवाला कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी 1971 तेरी उम्र की फुलवारी रिमेंबर याद इस एन हेल गुए वेज एन लेके हेरिनरिंग ओम टू रिगेन द टाइम टू गान हे यार 70 बिगिन

0: आखिरी बयान आप सुनेंगे आज फिल्म रखवाला। और देखा जाए साथियों, इस बार सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी को लाते हैं पैगाम में। कल्याण जी आनंद जी के सांच पर सुनाने वाला है ये कैसी मैंने मधुर सी
1: करें।

सी मधुर सी ऐड फिल्म रखवाला आखिरी बयान ऐड फिल्म ऐड 1971 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और सुना दी आप सभी को रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप सुन रहे थे। सभी नगमे फिल्म रखवाला का मैं आप सभी को सुना चुका हूं साथियों। अब लेकर चलते हैं एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1971 में, फिल्म नया जमाना। एक बार फिर एस डी बर्मन के साज पर आनंद बख्शी के अल्फाजे और इस फिल्म में धर्मेंद्र ने काम किया है मलकाए हुस्न अमित सेन द्वेद फ्रॉ हेमा मालिनी अशोक कुमार है ओक इन दिस फिल्म स्पेल्ड और कॉमेडियन महमूद अरुणा ईरानी जी के साथ इस फिल्म में भी काम किए हैं। तो फिल्म नया जमाना से आप नगमे सुनेंगे। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक बार फिर से भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी एस डी बर्मन के साथ अनंत बख्शी के अल्फाजे रामा रामा गजब हुई गवारी।

Rama Rama Gajab Hui Gawari. Beautiful song uit de film Naya Zamana 1971. S.D. Berman ke sajaya hua hai ki sundar bayan. Aur aap sun rahe the Lata ji ke beautiful awaaz mein. 5 मिनट बाकी है 10 बजने में साथियों, तभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं, कहीं जाना मत साथियों।

हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

पावन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनतुलक वेलकम्स बॉयज एंड गर्ल्स, सुसलो बिलो बी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अनतुलक बेडंक्ट फॉर हेट लॉयसरन। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, इश्तिहारे, दैनिक अनफा होने हिंदुस्तानी रेडियो, सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 7 3 5 6 2 20 7 4 तक। कंटोर और स्टूडियो का तार का नंबर है 9 7 3 2 6 2 7 7 तक। जो भी रेडियो का काम हो ना, दैनिक अनफा होने हिंदुस्तानी रेडियो इवन फन हर्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रेक्लाम बनाते रहना है, सॉफ्ट टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप है तो हम लोग भी है ना। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। Natuurlijk hebben we ook onze eigen karaoke clubje met heel veel omroepers die live voor u gaan zingen. Volg onze social media en onze omroepers, dan hoort u zeer zeker wanneer wij binnenkort voor u live gaan zingen. सभी जानकारी इसके बारे में अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो आप तार करें अपने 7 3 5 6 2 20 7 4 तक पर एंड फ्राग नार ओन से टीम लीडर द वन एंड ओनली मैस्ट्रो जॉनी नंबर वन। वरक के मुताबिक बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ यारो। नगमे चल रहे हैं जो फिल्म नया जमाना निकली 71 से। अगला बयान जरा दिल को थाम लीजिए, जबरदस्त गाना आप सुनने वाले हैं और एक बार फिर हसीनों का पुजारी संगीतकारों और सभी संगीत से जो जुड़ा हुआ है ना, सभी के बादशाहों का बादशाह आप सुनेंगे। वन एंड ओनली हसीनों का पुजारी किशोरदा, वन ऑफ माय फेवरेट किशोरदा जी का। दुनिया ओ दुनिया तेरा जवाब नहीं भाई, जरा अल्फाज़ पे जरूर ध्यान दीजिए। द वन एंड ओनली मैस्ट्रो आलर्ट द ग्रेट किशोरदा।

a masterpiece of composing statio uit die zonder bayan door natuurlijk Sachin de Bermanji. U kunt gerust zeggen dit naam moka SD Bermanji ne pahla moka to SD Bermanji ne dia Kishore Da ko gaane ka aur sikhaya bhi bahut. तो जिस खूबी से ये अति सुंदर बयान को कंपोज किया है एस डी पैच ऑफ हमेशा की तरह एन हमेशा के लिए हैट्स ऑफ टू मास्टरो सचिन देव बर्मन. फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है कुछ नगमे आप सुन रहे हैं जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है और हम पहुंच चुके हैं फिल्म नया जमाना तक जो रिलीज किया गया था 1987 में. अगला बयान एक बार फिर प्रोग्राम में भारत रत्न लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय मास्टरो एस डे बर्मन जी. दिल को छू लेने वाला नगमा, जरा अल्फाज़े पे जरूर ध्यान देना.

सॉन्ग है बाय क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी। आई फिल्म नया जमाना 1971 कंपोज एंड अरेंज बाय माएस्ट्रो एस डी बर्मन और अल्फाज़े था आनंद बख्शी जी का। 13 मिनट व्यतीत हो चुका है साथियों, 10 बजकर बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और आप चुन है फार्म ऑन हिंदुस्तानी रेडियो पर द वन एंड ओनली हैप्पी स्टेशन फ्रॉम दी हेग से थी देन हाँ। एक जबरदस्त मजेदार सॉन्ग रख दिया है प्लेयर में आप श्रोताओं को सुनाने के लिए और इस बार लाते हैं पद्म भूषण मन्ना डे जी और कुछ अल्फाज है महान गायक एक्टर लेखक क्या क्या नहीं था महमूद जी। मिलके सुनते हैं आया मैं लाया चलता फिरता होटल, बहुत ही मजेदार सॉन्ग महमूद और मन्ना डे जी के आवाजों में।

0: ब्यूटीफुल मजेदार सॉन्ग पद्म भूषण मन्ना डे जी और मुकेश जी की आवाज में थी सुंदर बयान है जो फिल्म नया जमाना 1970 फ्रॉम द सेम मूवी एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का ये मतलब से भरा हुआ बयान कि चोरों को सारे नजर आते हैं, चोर क्या बात है, क्या अल्फाजे है आनंद बख्शी जी का एस डी बर्मन जी के सांस पर एड मूवी नया जमाना।
1: सो इल्जाम लगाए वो मेरे नाम लगाए, आपने सो इल्जाम लगाए, चुप क्यों हो गए?

0: अरविंद।
1: आते ही चोर, क्या बात है, दिल को छू लेने वाला नगमा। 8 द फिल्म नया जमाना 1971 कंपोज बाय मास्टरो एस जे बर्मन। और क्या, रो रो कर गाई भारत रत्न लता मंगेशकर जी। 9 मिनट रह गया है साथियों 10:30 बजने में, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ आखिरी शेर्स हो जाए ना हमारे शेर्स के पुजारियों के लिए। अर्ज किया है साथियों की काश तकदीर भी होती जुल्फों की तरह, काश तकदीर भी होती जुल्फ की तरह, जब जब बिखरती तब तब मैं उसो उसे सवार लेते ना। ये जो हम दर्द मिलते हैं ना, ये जो हम दर्द मिलते हैं ना यारो, इन्हीं से सब दर्द भी मिलते हैं। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकली ही नहीं। बहुत शौक था मुझे भी दिल लगाने का, बहुत शौक था मुझे भी दिल लगाने का, शौक शौक में ही जिंदगी बर्बाद कर बैठे। आखिरी शेर साथियों आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, हर सिग्नल तेरी याद दिलाता है, हर सिग्नल तेरी याद दिलाता है, तूने भी रंग कुछ इसी तरह बदला था, क्या बात है। ये था कुछ आखिरी शेर हमारे आज के हिस्से के कार्यक्रम में। अगला बयान एक और मजेदार सॉन्ग है, पिक्चराइज किया गया है महमूद जी के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं कितने मजेदार ये सॉन्ग हो सकता है। एस डी बर्मन की सजाया हुआ ये अति सुंदर बयान, लिखा है आनंद बख्शी जी, और सुनाने को जा रहे एक बार फिर वही महान शख्स, संगीतकारों और सभी कलाकारों का बादशाह और शहंशाह, दवान डोली किशोरदा, वारे नौजवान आजकल के। आखिरी सॉन्ग आज

वाह वाह, अरे वाह वाह, अरे वाह रे वाह रे वाह। वाह रे नौजवान आज कल के, रंग रूप अपना बदल के, ए देखो रे

0: इधर को जा रहे हैं, वो इधर को आ रहे हैं, ये उधर को जा रहे हैं। रोएंगे एक रोज हाथ मल के बाहर नौजवान आजकल के।
1: क्या बात है, किशोर दा के अंदाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एक फिल्म नया जमाना ने थी एन सीफत कंपोज अंतरिक्ष बाय मास्टर एस डी बर्मन जी और अल्फाजे था आनंद बख्शी का। और जिस खूबी से और जिस स्टाइल से किशोर दा जी ने ये थी बयान को सुनाया, जितने तारीफ करे कम है यारो, कम है। तो साथियों वक्त भी करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को।

धीरे धीरे आ गया है वक्त भी, ये भी आज गया है। तंदुरुस्ती उतना अप टू डेट नहीं है इस वक्त, लेकिन भी फिर भी कोशिश किया आप सभी को अपना प्रोग्राम सुनाने को। ये यशोमीद है, ये यशोमीद लेकर घर को जा रहा हूँ साथियों, कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे में आप श्रोताओं से फिर मिलने वाला हूँ सरनामी संगीत लेकर। पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक, सरनाम और हॉलैंड के कुछ कलाकारों का, और उसके बाद ओनली नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो ये तक था आज का मेरे हिस्से का प्रोग्राम। हमारे बाद आप एक आधा घंटा का प्रोग्राम सुनेंगे हम लोगों का टीम लीडर मैस्ट्रो जॉनी नंबर वन जी का, और 11 बजे रात्रि विज्ञापन और न्यूज के बाद आप सुनेंगे एक हेरहालिंग फनत फमिडाख प्रेजेंटेड न्यूज uit Suriname, van Suriname, door onze eerwaarde collega Barka Bhaiya van Hindustan Radio ka correspondent aur journalist, the one and only maestro Romeo Hoosdika, en na hem gaan we over op onze nachtprogrammering. To mujhe aap sabhi izazat de saathiyo, और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ दादा हेमंत कुमार की याद।

बाय बाय श्वाय श्वाय लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और साथियों, आने वाले रविवार शाम 5 बजे मैं कोशिश करूंगा आप सभी से फिर मिलने को। तब तक के लिए बाय बाय श्वाय श्वाय श्री विश्वीति एंड लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। सो सो ब्लेसिंग ब्लेसिंग एंड लोबी लोबी टू ऑल ऑफ यू। En natuurlijk bedankt voor het luisteren.

दोस्तों और अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और हमारा प्रोग्राम पुराने नंबरों की बहार प्रोग्राम यहाँ से चलते हैं और अपना पुराने गाने की ओर हम बढ़ते हैं और चलते फिल्म अनमोल की ओर देखती निखने शस्त्र का भीगा भीगा बदन और भीगा भीगा बदन और मेरा चंदन की तरह महकते हैं फिल्म अनमोल मोती का ये गाना दोस्तों आओ मिलकर हम सुना जाए।

और क्या दोस्तों, इस गाना बहुत पुराना गाना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और ये छोटी सी मुलाकात जो है, और ये विजयंती माला उत्तम कुमार का ये गाना है, और ये पुराना गाना हम आपके लिए यहाँ से चलाते हैं।

फाउंटेन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यू ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंटेन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

Kala na jani uchinich, kala na jani jant, Sorsati Mata DJ, humko apni aashirvaad. तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा एक बार फिर राम राम नमस्कार प्यार भरी दाम से सियकाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम यही है हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम

और दोस्तों, इस ट्यून से आपके तो पता चल चुका होगा कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम हम तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपना देश सूरीनाम में। और सूरीनाम में भैया आप लोग जानो है, जहें देखो बस वहीं ही, जहें देखो वहीं सोना खुदा। भैया बेनलांत में सोना खुदा है, और जहां सोना है तो वहाँ लुटेरा भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग जानते हो, जब देखो तो कहीं ब्रासिलियान, तो कहीं ईट, कहीं ऊ, और जाए कि सबके लूट लेवे है। तो एक बार फिर यहाँ पर वही प्रॉब्लम आए ले हमारे जनता। हाउत बद्रैव सूरीनाम में वो है, बीते हुए रविवार को सोनदाह को दुई गो तुई हाउत शुक्र भैया फन अन हो खफालन ऊपर से गिर गया भाई। बाकी ये बात ना है, ये गिरल है दुई गो लंडन ऊपर से नादा से फोर्स एस्ते इंफॉर्मेशन वारन अफ कोमन ऑफ सो खनुम द हाई ग्रेड ब्लास्ट पे बार बे खातिर ओम एगो एक्सप्लोसिव भइल है इन खदील द फन मेन वार खस्तीन द मेट अन हो खौत गहालते वर्ड लॉस गमाक। तो वहां पर एगो काबल है एगो एक्सप्लोसिव से मन करी से जो ने इटवन दगे तब सुनवा मिलेगा। और यहाँ पे ना द ऑन फ्लॉफिंग, ना द ऑन प्लॉफिंग ढेर इलेखाल साउथ सुकर्स उरेक्टिंग हुआ मेरा। हाँ, वहाँ पर टैक्स फोर्स ट्रेड ओपन फॉर युग द ग्रुप, जिस वहाँ पे टैक्स फोर्स जो रहा ग्रुप हुआ जो हुआ दौरल रहा जो दगल है तो सबके हुआ खदेरी से। और बोले तेज तरह तो किंग हेड मिस, बोले कि वही में दुई मिला ऊपर से गिर गए और दोनों भैया कट उड़ गए, मोड़ी उड़ में चोट लगल है। और बोले है वेरतर प्लास से बहंदल टैक्स फोर्स मेरे वेर के सुसब के हेल्प करी से ई हैव यू फलिंग करी से। बोले बाकी दोनों स्लाख तो फरवन दोनों जो ने इटवा पे गिरल लाते से रॉस ब्लॉक है रातन ज्वार खवन भैया बहुत चोट आए गए हैं। शेर मोइलक बड़ा एक बार फ्लैक है वहाँ पे जहाँ पे जबन जाए क्योंकि हेल्प कर सके हैं। और दोनों लंडन हुए पे वो दोनों आदमी के दोनों के मौत हुई गए भैया, देहांत हुई गए, मर गए है। द सिचुएशन मिनट्स अंडर कंट्रोल है। बोले है मेंसेडियन ओमकेफिंग सिख नो रूरन फर्स्केलेंडे डिस्टेंस सेन इन गेस्काकल जहां पे फॉरेंसिस ऑफ स्पोरिंग दिस भी हुआ बा। और बोले ओक द हेल्प द भैया इलीगल मरल हैगा जैसे बन दागे हुआ इटवा बिरगिया फोरे है जाय के सुनवा खोजे के इलीगलवन दौरे है भैया सब दौरे के जाय हम सुनवा पाई। और जे दौरी है भैया तो यही प्रॉब्लम हुई। दोस्तों हम चलते हैं फीहा पी के ओर। यहाँ बताए गए हैं तो लुंजानो फोर से तरफ यहाँ पे ही रहा और रहा हम लोग के चांद संतोखी रहा। तो चांद संतोखी तो आप लोग जानो अपूर्णा है तो ओकर जगह पे अंदर फोर से तरफ जो रहा फीहा पी के और हैगा ग्लेन उलर्स। तो ग्लेन उलर्स अंदर फोर सीटर रहा। अब सब सोचे कि के फोर सीटर बनी हुआ पे तो यहाँ आज के न्यूज पे है कि ग्लेन उलर्स पैर डायरेक्ट न्यू फोर सीटर हो गए हैं फेहा पे के। तो पार्टी कांग्रेस नेखन इन 2027 तक वो रहेगा। बोले फेहा पे ही ग्लेन उलर पर डायरेक्ट आनखवीसन अल्स न्यू फोर्सेटर होफ वर्स्टीर के फोर्सेटर हैगा जब ऑल प्रेसिडेंट संतोखी ने फॉलो द ओवरलीडन पार्टी संतोखी जगह बा। अब बोले 4 तारीख मई के एगो फरखादरिंग में होफ वर्स्टीर भइल है फॉलो द पार्टी वाज द फॉर ईस्ट twee derde meerderheid van het aantal situatie bestuursleden aanwezig waardoor rechtsgeldig en besluit kon worden genomen. De volledig naar haar bestuurder maar 2/3 deel besluit kreeg. Of hoe besluiting was van Kabul Lily is om de 2/3 deel aan.
Omdat het opvallend is dat Oelers niet via een directe verkiezing door de partijcongres is gekozen, maar doorschuift vanuit zijn functie als ondervoorzitter. Dus ook is hem een verkiezer genaamd bij Thijs. Maar omdat de ondervoorzitter had, schuift je als voorzitter. De VHP stelt dat dit gebeurt conform artikel 11 lid 5 volgens van de partijstatus Milikele. Bullet de aansluiting loopt vanuit een formele goedkeuring door het eerstvolgende partijcongres Oelers. Zal de functie uiterlijk 29 mei 2027 klikken voorzitter. Op die datum moeten de hoofdbestuursverkiezingen door de partijcongres worden gehouden. Tapine Hoiga. Ook er waren mee, maar Oerhega tot en met Janneke mei 2000. 27 klinkt aan hier wel als salte gele 1 jaar keer. Uba, toen dus toen jij ze hee, ouro te aaplok ko hem, uske baare mee batante hee rehege. Aaplok ko pata bhaiwa loon, bhaiya loon, mausi loon, dadi loon, kana waima joan botia aukar baare mee huwe hapta mee. Bhi aap sab ko hem bataye te ki bhaiya joan firwa hapda huwe kana waiwa, very sherfis joan hee. वहां पर भैया नवा नवा राजफन बस्तीर बैठल रहा ओकर बारे में हुआ के कम करते स्टक कर ले रहा जब मिनिस्टर फन गई ले हुआ पे तब बोले हैं जो बस्तीर है बोले बारा चोरी करी से तब बस्तीरवा के इन डायरेक्ट ऑन स्लक कर दी से रखे रे बाकी उस सबके को ऑफिसर रहा जेकर नाम बा सिंथिया एंसर एंटेनमेंट मैनेजर रहा लेस्ली डैनियल फंडा कानावाइमा मैनेजमेंट कंपनी जो तार तारीख सोमवार के फिर मई के ओहू सबके ऑन स्लक मिल गए है दैट बा फेस्टकन ब्रॉनन बाय द स्केप Vaartmaatschappij in Suriname tegenover. Bolle vernomen wordt dat is een besluit van lezen onderzoek bijlegen. Kiezen hem zeggen naar onder meer financiële. Bolle die financiële chori kalle baate bhaiya. Fraudeer kalle baate. En je fraudeer kalle baate. Dat krijg je dit allemaal mensen. Pahle bestuurwa ka bolle he. En bestuurwa onslaag bhaila. Ap okar adviseur bhi. Okar adviseur bhi. Yani ki onslaag hoige he. Hamare janta. और यहां और बतावे है एफएम के बोले है कमिश्नर रातफान कमिश्नर के बोले हैं और फान सीएमसी वेयर टू इन टू द अप्रैल के उस अब ऑनस्लॉग भइल है जहां पे कमिश्नर रीजनल फ्रीजर एंड लीडन अब्दुल मदार एंड एडगार फान खेंद्रन Minister Raymond Landveld, die heeft communicatie en toerisme gebeurde dit moreel en ethische gronden. Ik heb een corruptie gehad, belang voor stellingen en mogelijke corruptie gehad. De corruptie te Hamara. Deze is ter plaatse bij Hamari Janta. Dat is ter plaatse bij Nou, wat verwacht je eigenlijk van deze? Nieuws is een hele normale nieuws, mensen. Want je hebt zo'n nieuw, dat hem aanplukken betaalt hier. Hier per corruption bhail hai wahan corruption bhail hai ta je corruption ho hai dosto ta batana to hamara kaam hai lekin in Suriname is dat een hele normale saag geworden wat betreft over corruptie beste luisteraars to ye baat hai hamari janta ab dekho bhaiya ka bole hai Deo Sharman ka bole hoge gebouwen in Suriname vereisen moderniseren. Sering van brandweer. Bole jon purana barka gebouw he. Bole sab chahi brandveilig reke. Bole chahi moderniseer kareke. Ucha gebouw Suriname me ba. Vereisen panden die op een niveau van high-rise gebouwen waren neergezet. Deze kwestie werd afgelopen week aangekaart. Brandweer Suriname 1993 keer. In het hoogste college van staat.
waarop de parlementariër onderschreef dat de brandweer gemoderniseerd en adequaat uitgerust moest worden, willen alleen nablussingswerkzaamheden verrichten. Huizen niet verzekerd tegen brand. Bij huisbrand blijkt veelal dat huizen en panden van bewoners niet verzekerd zijn. Al hoe heb je geen verzekerd, barka gebouwen, okay. Maar die moeten natuurlijk wel brandveilig zijn. Mensen, zo is het in Nederland ook. Mensen, het moet goed brandveilig zijn. Vooral die hoge gebouwen niet, maar alles moet brandveilig zijn. Toen je baat tegen Marie Janta. En ja, wat hij, bhaiya. VS, Amerika en Iran escaleren strijd. Om straat van Hormuzi doenen ke ladiya hoe bhaiya hiya hum log ke tel hiya pe dala se jyada hoi ge hai. Amerika aur Iran somwar ke new anfal kari se bhai in de Golf regio mensen, terwijl Dunu Deswan verwikkeld zijn in een strijd om controle over de strategische staat van Hormuz. Dunu mange Hormuz kilewe. Ab ik kona sunio bhaiya ki orlokhwa hove keran wapen ke. Ki mach ke ab sab kuj tel ke baare me jahen. Wan Hormuz straat jun hai oke saman ban kal le ba dunu. Aur pura dunia ema musibat me ba. De nieuwe escalatie ondermijnt een fragiel staakt het vuren. En zorg voor toenemende spanning in een van de werelds belangrijkste energiecorridors. Ja, wat hij geeft, dosto. Bole aanvallen raket zo hoe drones zo hoe he Donald Trump bole een nieuwe operatie aankondig kriesega project freedom ke baare me ki freedom hoe vrij hoe en ik er baare bole vastgelopen tankers en andere schepen weer doorgaan te bieden door de zeestraat die vrijwel gesloten is sinds de aanvallen Amerika Israël se aur Iran se februari me ban bhail he dosto. En hier betaalde Amerikaanse autoriteiten werden maandag meerdere koopvaartdijschepen getroffen. Trump wilde weinig over project Freedom ba. Dat hij via social media aankondigde. To ibhaiya hum log ke Trump to duniya bhar ke cheez upar bole hain. Maar konchi Oma waar hui paave ki na hove hai sabse badka musibat hai ki hum log ke tel ban hai aur jab tel bane bhaiya to hum log ke ka bole mahanga me kinek pari arbeids dags bhaiya kwesti arbeids dags ke en dik doran jo hai ga en steeds heet hang ijzer voor hoe op je jonhega C47 vakcentrale jonhe Suriname bole hega bole arbeidsminister van arbeid ke bole vervolgens onderbrengen van dit directoraat onder andere ministerie jon minister van arbeid he bhaiya nog steeds een heet hang ijzer ba bole zoals bole bekend kere he valt arbeid nu onder ministerie van volksgezondheid wel zijn arbeid aur ik er baare me Robbie Berenstein bole situatie ook nooit goed is uitgepraat met de regering een keertje is er even daarover met de president gesproken maar meer niet Berenstein zegt dat er vanuit de vakbeweging ook worden gekeken naar wat de invloed van de beleidsbeslissing zal zijn voor de werkvloer. Ke bare me bole Berenstein C47 ke aur dosto chikungunya bhaiya Suriname me is bahut jyada hai tekar bare me Raghunandan ka bole baloof kare hai ki chikungunya blyfen chikungunya bespuiten blyfen uit in Nikeri. Ja, bole bewoners van Nikeri aur westelijke polder bole he ki aankondig karisega ki bespuiten tegen chikungunya terwijl volgens openbare gezondheidszorg BOG bole 24 april ke bole uitgevoerd hadden moeten zijn bole 24 april ke bole uitvoer keret aur DNA legion he Ravin Raghunandan bole ophelderen mange ministerie van volksgezondheid ke aur bole hega nu blijkt dat meerdere straten niet zijn behandeld aur communicatie volledig uitblijft
बोले ढेर रास्ता बोले सब नासपोईटी करी से बोले हैं मानदन फन वाक्तन क्वामन ऑफिशियल बकेन माकर भी ओके बोले हैं ओवर गरिक्त बस्प्रुइटिंग इन ओंडर मीर फन पेटम पोल्डर एंड द वेस्टलिक पोल्डर देर गा बवोनर्स होप दैट इट अल्टीमेटली एक्सी सो वन निकेरी में बहुत ढेर भी भैया जैसे परमारीवो में निकेरी में बहुत ढेर चिकुनगुनिया है आदमी बहुत बीमार है फोकस इन यालन एड गमेनशाप से नीट अल अनकोंडक्ट weken aangedaan en zijn sommige straten ondanks vermelding op de officiële route toen ik er waren met DNA lid roep en BOG in het ministerie te Suriname bij ja te lonjano he pura kam na hoe dunia ke de khade ki malli bati hem maar mooi se je takio ta adhati ha mare bhaiya और आधातिया ना मारे है अब देखो भैया एगो हंता फ्यूरस चलल हैगा एगो क्रूस के फैगा होंदियो इसमें और हुआ पे भैया बहुत जबर ऊ काबुल फ्यूरसवा चलल हंता फ्यूरस हैगा एगो क्रूस के पे भैया सबको या क्रूस करे तो ओके जरूर चाहे जाने के कि एगो वेर खसौत है थे सौरख है अने वेर खसौत है ऑर्गेनाइजेशन है हाउट ए रीकनिंग में कि ता फ्यूरस जो नहींगा इंसान से इंसान बसमेत करे हैं और ये क्रूस के पुआ भर पे बा और ये बोटिया हैगा होंदियो इसमें और मारिया फन कैरकोफ है एस्ट बसमेतिंग पाइज फरमूडलक बैटन है स्केप ऑपखलोपर वार ना है फ्यूरस ऑन बोर्ड इसका इंट्रोड्यूसर तब ही बतावे फॉल्कंस एगो डेस्कंदख बोले हैं मारिया फन कैरकोफ बोलेगा एस्ट बसमेतिंग बैट बोर्ड के बहरे रहा और बोटिया हम गए एक वन सबके अन अन अन बस मत कर दी से द वे हा ओ बना दे कर दैट इट नोग आन अन आन नाम खात बोले वेल इन मिडल्स बफेस्टक करेगा कि मेरदर ऑफरन दे बीमार है ओमा बोले रिपोर्टेज स्टेल द ऑर्गेनाइजेशन दैट फाइव पर्सनन फरमूडलक बसेन बसमेट सेन खराक और यहां बतावे हैगा सीकर इज दैट अ नीदरलैंड्स फ्रॉ इज ओक ओवरलीडन मेंस अन द गेवोल्गन फ्रॉम द फ्यूरस उ सीकर है दोदन एंड बसमेटिंग ऑन बोर्ड ईदर वेयर बकेन कि सीकर तीन पशाशीर बुटिया में मर गए है लुफ्टवेफ इंस्पेक्सी से Nederlandse echtpaar dat aan de cruise deelnam. Het is mogelijk dat zij aan boord besmet zijn geraakt. Ik ben 69 jaar oud en vloog naar Johannesburg in Zuid-Afrika waar zij ziek werd op 26 april in ziekenhuis overleed. Besmetting mogelijk via nou contact ke bare mein to skip hua jo botiya bhaiya oke samay quarantine mein le li se ga jaise virus jab hum log ke raha ane ka bole corona to sab koi quarantine mein band raha aise botiya ke samay ka ferdi mein le li se ga ekar bole the fortrock fund ane uzaya in argentinie lig middels al dagen voor anker voor de kust van praia hoofdstad van de kap ferdi geen van de offer waren 8 passagiers en 59 bemannen geleden van 23 nationaliteiten mag van boord. De autoriteiten staan alleen tot dat 3 zieke personen het schip verlaten. Of sabke chahi uhi mein rahenge, want sabke onderzoek hoe hai. Ondertussen spaien toestemming deze ki mogelijke doorvaart naar Canarische eilanden waar het schip kan worden onderzocht. Aur bole oké sabhar en gedeinfecteerd kriga botia ke de Spaanse autoriteiten besloten later op de Honduras dat werkelijk mag aannemen. ये फीरस भैया बड़ा गड़बड़ चीज है बड़ा गड़बड़ चीज है फीरस भाई तो जैसे रहेगा आप लोग को बता इंडिया के मिनिस्टर सुरनाम गए है और कराइबिस कबीत में गए है इंडियन से मिनिस्टर बैतलान से साके के अब वो गए है सुब्रमण्यम जयशंकर 2 तारीख से 10 तारीख ले वो हील कराइबिस कबीत में लोन टू करेगा जयशंकर इस समय पे जमैका में और सुरनाम में भी आएगा फेर द तरह से ना त्रिनिदाद एंड टोबैगो और बतावे है इंडिया
onderstreept het bezoek de nauwe historische en culturele banden van India met drie landen, vooral vanwege de aanwezigheid van nakomelingen van de Indiaanse contractarbeiders, zoals Hamlo Bhatti, de Ohik Mareu Jahe, India. De minister buitenlands zegt dat de bezoek gericht is op de ondersteuning van Indiaanse politieke betrokkenheid met Jamaica, Suriname, Trinidad en Tobago. Naast officiële bijeenkomsten zal minister van Buitenlandse Zaken Jaishankar ontmoeting met het bedrijfsleven van de Indiaanse diaspora in drie landen. De India hai Diswa, Trinidad Tobago Sanam, Jahape Hamluk India Academy, Suriname Megail hai, ook jij help kree. En nogmaals mensen, de India zegt dat het bezoek gericht is op een ondersteuning van Indiaanse politieke partij, politieke betrokkenheid met Jamaica, Suriname en Trinidad en Tobago. Dus to je baat hè, India ke buitenlandse यानी कि मिनिस्टर के बारे में हमारे जनता. अब देखो भैया हम चले हैं और आगे फिर वैरक भैया जैसे फोलन दाम में एक दाई जगल रहा बहुत बड़का स्काद हुआ भैया. ऐसे शीना में एक फिर वैरक का फैब्रिक है जहां पे फिर वैरक बने हैं वहां पे बहुत बड़का एक्सप्लोसिव भैया है और इस फिर वैरक फैब्रिक के नाम बा शांशा प्रोविंस हुनान में है भैया हुनान. तो एक स्वार एक्सप्लोसिव है लेगा फिर वेरेक फैब्रिक जो नेगा स्टार्ट लियांग में शिनेई से प्रोफेसी हुनांग में सोमवार के 26 लोग मर गए हैं 61 लोग वहां चटाई गए हैं और बहुत जबरदस्त क्रख फन एक्सप्लोसिव फर्नील द खबोवन एंड फॉर ओर सागत मिस्टर हुखो रुक वोल्कन दी बोफन खबित आईस्टीगन एक प्रेसिडेंट जो नेगा यिंगपिंग हैफ ऑफ गिवन टू द ग्रोंडिग एंड स्नेल अंडरसूक एकर बारे में बोले चलो तुलो अंडरसूक करो जल्दी से कि कैसे चीज हुआ हुई सके है फनवी खर खफार फन ब्रान बार स्वार बिस्क्रेट फॉरवर्डन इन ट्वी ऑफ्सला ख्रेम तर वेर दे है ओमलेखन द खबीदन खाई फाकुवेट में से तो चीना में इतना बड़का एक्सप्लोसिव भाईल है यहां नीदरलैंड में भी भाईला तुलो जानो फूलन दाम में भैया फूलन दाम में भी यही चीज भाईला. तो हमारे जनता और आगे हम जाइए मनोरथ का बोले भैया मनोरथ हम लोग के श्रीनाम में मिनिस्टर हैगा फॉर यूसीएस पॉलिसी मनोरथ एरकेन नीफन वर्क पॉलिसी मार वास्क्यूड फॉर मिस प्रोजेक्टेंस दिनस्टेड. हाँ बोले है बोले नीफन बरूपन मोहन ऐत उफनन बनादरक तेरा अम्तनार बोले हमार दी इन प्राक्ते अन खदूख बलेत वर्ड गफूर्द सो दैट मेंशन इन लीफर्स होदन कुनन फोर्स इन बोलो के मख के दूसर काम करे के जो ने वो अपन जिंदगी और मुंह से चलाई सके है वेस एरोब दैट यालस द 300 अन मी है पर्सन दी दीस फरलातन ओम एल्डर्स फाक in buitenland te gaan werken voor beloning aanzienlijk hoger ligt. Bole 300 admiokar chal gaye personeel buitenland mein kaam karenge te ICU mange apan admiyan ke pakde opleiding centrum mein 205 go an recruiter beforder karise aur bole yahan par 5000 go policy agendan moeten liggen om optimaal te kunnen opereren. Momenteel telt de korpspolitie 2700 bemanningsleden. Als ze je poetje hebben, willen slechts ongeveer 10 zo nieuwe krachten worden aangetrokken, terwijl maandelijk 20 tot 30 personeelsleden het korps verlaten. Te op zoek naar de betere werkzaamheden en beloning, vaak buiten de langs. Grenzen ze hebben ja kam kree. Aur ekar baare mein sabar poochi sahayti anwa ke baare mein kaise hai Jane Shaya McShon ke die hai eerder als een van zijn vier adviseurs had betiteld. Beveiliging van politieambtenaren genoot of zal genieten? Antwoord Manore, daar is niets van waar. Hij voegt eraan toe dat ambtenaren in de praktijk wel ruimte zoeken voor extra inkomsten, wat mensen hun vrije tijd doen. Daar kan ik niets over zeggen, aldus de minister. De mensen werken ploegendienst om hun levensonderhoud te voorzien, maar velen meerdere banen, sommige verrichten in hun vrije tijd. Beveiligingswerk bijvoorbeeld bij gouddrijven, andere gaan naar het binnenland om extra te verdienen. De oesap mag hebben, ja. De kali corruptie ketje na hoe weet u, want corruptie is subsie.
बड़का बड़का प्रॉब्लम है दिसवा में हमारी जनता, आप लोग तो एक बारे में पता है। अब देखो भैया, नीदरलैंड खाद्रीसी को ऑफारन द क्रूज के ऑफांगन एट नीदरलैंडर और नीदरलैंड पठाई से और जाएगा जो अब क्रूसो अकमारे बोली बाटी होंडियस में जो बसमेंट भैल है नीदरलैंड तीन गो आदमी के जाए लावे फॉर द क्रूज के दैट फॉर द कस्ट फॉर द काफे दी लिख ऑफांगन फॉलोज मिनिस्टर बैतलांस साकन ओम ए नीदरलैंडर एंड वीरल गेसोंथेट ऑर्गेनाइजेशन स्प्रीक van twee ernstige zieke patiënten. Een team is op het schip dinsdagmiddag aan het inspecteren. Het is de bedoeling dat ze de medische toestand van opvarenden gaan bekijken. Door Nederland, de cruiseschip van de Nederlandse Oceanwide Expedition heeft geen toestemming om aan de meren van Kap Verde, de eilandgroepen ten westen van Afrika, waar schip momenteel ligt. Er zijn nog 150 opvarenden aan de boord naar het aantal van hen. Hanta virus had afgelopen mensen. Dus ये सब बात है हमारी जनता। तो आप लोग को हम सोची एक गीत सुनाई दी, तो अभी आप लोग के पास हम तुरंत आ जाएंगे।

और दोस्तों कुछ नया गीत भी आप लोग को हम आज सुनाए हैं। तो हम चलते हैं फिर से सूरीनाम ही की ओर। एक द्रियन त्वेंतक यारक है भैया, द्रियन त्वेंतक यारक एगो मोन्तुर सरनाम में सनिचर के ओके सिपाही गिरफ्तार करी से भैया करे का रहा नीखन। द्रियन त्वेंतक यारक मोन्तुर के सिपाही पकड़ी से भैया यो अपलिखतर रहा भाई, बड़का जबर अपलिखतर रहा एडमी अपलेख कर ले रहा, फोर्स दैस्त्र कर ले रहा, ऊपर से बदरेक भी कर ले रहा। एगो नीखन देर तक यार के आदमी के बोले है दे देत यार तू ही माल ये रमिया गया अन के तकरी से लातूर के लातूर पे तीखन मोन्तुर के बोले एक बीते हुए साल में ये रमिया गईल है अपन औदी काबरियो ऑफ वार मोतर को प्रेपराची करे गए ला एक गए ला अपन औदियो ओतो के अपन मोतर को प्रेपराची करे के देरा बनावे के ये रमिया के मैं ये रमिया का करी सेगा ये रमिया और ऊपर से एक भरे रहा

600 डाला ओके भरी से अपन ओतो के मनवावे के और 12,350 एसर दी। बोले हमारे का रिफिसी कर दे फंड मोटर कप कपवा बनावे के तो अब हीडन वडमिया ओकर ओतो फुर्तक एक्टर नीत तरह करी कर ओतो हुए ना देशो के भैया तैयारी वारी में गए ले नालिश करी से ट्वीडर इन अप्रैल अप्रैल में भी गए नालिश करे तुन आन की फिर मोंटेर आंसप्राक ऑफ एट आउट ब्लेव फंस फुर्तक सो ये एम है मैं बद्रेक मैं टू ब्रेंगर फन फॉर वांडिंग गए ले पर ओतो मांगे थी ओके बद्रेक करे ऊपर से भैया और ओकर औदी ओके ना दे भैया हमने नहीं बनाए रख रहे कर बारे अब पकड़ान है बाकी सोचो भैया दुई ढाई तो आन के तक करिए सिपाही में तब जाए के सिपाही तो सुने हैं ये भी एगो नवा कानून हमें जनासी नाम में बन गए का के रे में दुई दुई ढाई ओके जाए के और का बोले है नालिश करे के परल है आरखिफ तक करे के परल। अब देखो भैया यहाँ भाई झगड़ा भैले बेस्ट शफियर से और एगो पासाशीर से अब पासाशीर गुस्सा ने भैया हाँ यहाँ बतावे एगो फिरेंदर तक यारख है रोमारियो आलियास रू ओकर नाम है और बताई गई हैगा झगड़ा भैले पहले वार्डन वेस्लिंग भैले बस उठाई से को ईटा भाई भाई ईटा बहाई से लेन बिस सो है बर खोई दार बे राखते एगो एगो पचाचीस ओ मारा ओहु चोटाई गे है ओकर ऐना भी फूट गे सही राइट फर्नील फेव तक यार को बिस चौफिर एकर बारे में नालिश करी से और बोले हैगा Volgens de eerste informatie rood de chauffeur een biljet van 100 SRD dollar en echt direct zijn wisselgeld. De chauffeur vroeg hem vanwege de drukte even te wachten, waarna een woordenwisseling ontstond. Dus Jeremia, passagier zoals zo roep je ook in deze, of wil je maar paisal uit taart, of wil je even wachten, dat is druk hè. Bas je goedzijg, bas je woordenwisseling bijl, bas maar is ega, zo SRD ge behane, saan kan ik een hajaren ke aina poort deze, of ik milag bij chotai. बोले सिचुएशन इंडम एस्कालेर हो गया रहा बोले द फरदख्त द बस फरलीत अन स्टेन पकते इन दिस रिक्टिंग फुरते होइदे द स्टेन फॉर बेसल द पडक के अन इट वर फुट गए अन सही रेट एंड ट्रफ दार वे को पैसेंजर्स के रूम मेलदे से क्लार द फ्रीवेलिग बाय द पुलिस टेन से फॉर गाफ्ट है टून De steen te hebben gegooid. Al verklaar kregen Gussam Ukarisega. Chauffeur hem volgens zijn zeggen met een hamer zou hebben bedreigd. Obole er is een worsteling was ontstaan. Een passagier zou de hamer uit de handen van de chauffeur hebben gehaald. Bole go hata uri uthaila hame mareke. Bole hem luk me maar bijl he. Bole ik mila leren de verdachte gaf aan bereid te zijn aan gerichte schade te vergoeden. Het onderzoek in deze zaak is schande. तो भैया झगड़ा ऐसे थोरो है ईटा फीटा भाई के फोड़ दिए गुस्सा आदमी के नकुनवे परे भैया तो ई सब चीज हुए। अब तो लोग जानो भैया मलाइनी के तो दया नाम है एनडीपी के को मलाइनी है और ओकर नाम है जेनिफर फ्रेज साम सोविन खलीखन मिनिस्टर माइक नूर जालिम लानबो ऑफिसर है इन फील्डिल के मिनिस्टर है ओके बोले हैगा ओके चाहे ऑनस्लॉग कर देवे के बोले द पॉलिटिका स्टोर चेक ईरान तरवेल जेनिफर सिमोन ओके दैलक पुलिस हैगा नूर जालिम के betrekking tot de komst en een inzet van de menumieten voor de landbouw in Suriname willen toch om aan een zaken menumieten zijn. Ik erger me wanneer er beleid wordt gemaakt waaruit vanuit de hoogste top en niemand houdt zich eraan. Ik ga dan weer het voorbeeld geven van minister van LVV. De president heeft een bepaalde visie over de menumieten en het agrarisch beleid en hij gaat gewoon door mensen to i baat bole he ego limbo ego fm studio he oma bole se line en Lionel Blokland van de en die hebben samen Nederlandse ondernemer Rutje van der Belangen van de Menomieten in Suriname behartig mensen to ye baat he hamara janta to hum bole kuch झगड़ा के बारे में भी बता दे भैया ऋषि तेखन तुई हाँ एक्स पार्टनर भैया यानी एक्स वन खराब न करे है कैनेडी वेख के बातचीत है हमारी नानी 45 बरिस के एक औरत और ओकर ओकर फ्रेंड रहा द्रियम फिर तक यार रख एक्स
extra atwar kees heb me beet mula kaadje bhail bhaiya te itna mooi chiz heb aur ka bole pyar mohabbat karis ki is heb achitte me ekwa ekwa ke churi bhog de bhaiya steak partai hoi ge kene dilan aur mers weg ke hu ke baat hai aur bolega itna me ukar chhatiye me bhog kis upar muri bhog kis ki itna pyar ke ambulance us heb ke aile lewe bhai ha aur batave the word of whistling batave औरतिया के नाम बा बे ये पैगी बे हेवन मिस हंडल op een gegeven moment kwam zij te vallen en zag zij een scherp voorwerp op de grond liggen. Een opener met een mes. In de poging te bevrijden uit de greep van de man pakte hij de voorwerp en verwondde hem. Bole je met patki se uthai ke te bole ge opener hem paai ge li bati o maan ge churi raha. Hoe ik giral toevallig te bole hem ose bhoog de li bole prek bachawat rahi. Maar ab batia ee hai ki u churiya leke aila ki churiya hua paai se dam is het echt toevallig ki hua ge churi miller met de opener mensen. Maar goed, dan moet de onderzoek nog allemaal gaan gebeuren. Maar ja, toen jane commissariat kan Suriname kebato, ha, Paramaribo commissaris, John Toradika kwam toen jane, hoe jab dek to in barak hoe chori hoe bhaiya, jab dek to chori hoe bite hoe dino me bhi hoe chori bhail hai, aur na 2-3 rupiya chori hoe bhaiya, million se paisa hoe ja hai, ee baat hoe hega somas dek strat ke, ab hoa pe sipahi under suk kare, ee sab ka kar le hai, saban hoa के लोहा काट के आईना वाला काट के और इसे गैले भीतर भीतर घुस के चोरन और बोले लंग्स बतालें जीन डिफॉल्ट ऑन मिनिस्टर फॉर फाइनेंशियन और बोले वहां से 1.5 मिलियन एसआरडी निकाल लेंगे भैया और बोले द इन ब्राक मुत एरखस टेशन 30 अप्रैल एंड 4 मई गप्लेस सेन द 30 अप्रैल तो 4 मई के कोई ना गैला चेक करे तो एक ऑफस्पोरिंग दिस इसकाकल भैले तब ऑन द सुख हुए कैसे है तो बताओ भैया उतना पैसा चाहिए कमिश्नरस के धरे कि बैंक में चाहिए धरे के ई है हम लोग के सहूर है सर नाम के भैया कि आदमी लोन बदरईफन इतना इतना पैसा धर ले रहे वारफन 1.5 मिलियन हील फील geld is mensen dit moest al lang namelijk op de centrale bank gestort worden want die geld is namelijk niet van niemand het is van de land Suriname zo gaat het toch mensen तो ये बातें हमारी प्यारी प्यारी मीठा मीठा जनता भैया नूर सलीम का बोले है नूर सलीम बोले मछली लोन मछली जाने तो क्विक क्वी लीबा क्विक क्वी जो है बड़ा होल करे भाई बड़ा होल करे है हाँ तब बोले तुलों पकड़ पकड़ खाना बोले उछीन कर उसका नाम है रिफीर क्विक क्वी लीबा क्वी बोले तो बहेज बार बोले हैगा ओके मांगे कमती करे लंबोक मिनिस्टर बोले है एलवीवी के बोले है माइक नूर सलीम बोले है कि एक तुलन खाओ बोले वर्स बनाओ बोले फेस बालचस बनाओ बोले ई जोन तरी खत्म होवे है मेंस दी प्रूफन राखन Niet uitgesproken over de smaak. Laten we hen gewoon massaal vangen. Het is een heel lekkere vissoort, zegt de bewindsman. Maar paisaar het dan aanbollet, bhaiya. Tab to chori kar kar bhaid jaai. Dekho centrale re, huwaan pe commissariat me ka bhaile. Mama charia koi na jaai. Pakde minister Noor Salim werd eerder geconfronteerd met de schade die de rivier Kwikwi kan veroorzaken. Bole dam om jitra hai, hol banawe risiko hai, ki rasta saka hoi seke hai. Daarna verdreef de rivier Kwikwi de populatie van andere vissoorten in de Boomskreek. Heeft de Libakwi de tilapia al verdreven? Ha, in Libakwi jon he, ook tilapia ke sab ke afkar deze apre. Ik er bare mee ook er collega's die van Sang openbare werken en ruimtelijke orde. Heeft hij diverse oplossingsmodellen besproken? Er is gekeken naar de oplossing waarbij de Libakwi niet meer een grote mate vernietiging kan aanbrengen. Noor Salam is voorstander ervan. Toch Ribakui huwaan pe bara hani kare dosto. Ta hum boli aap log ko bata de. Ja khayyo bhaiya. Teke chahenga.
पकड़ पकड़ हुआ बांटे के आदमी लोग के तो ऐसे बतिया है। अब देखो ब्रेन स्वेग भैया बड़का बड़का आंखी निकार के बोले बोले 16 तारीख यूलिलेक बोले हम खाली गोरिला वो अंत फ्रीड है साम वर्किंग से एनडीपी के बोले अब 16 यूली खा एक इवैल्यूएशन बोले दान पास अ फॉलक और ये रे मिस्टिंग बोले तब फॉलक सुनी तो आप बोले इधर रॉनी ब्रेन स्वेग बोले है कि आसपास कन क्वालिसी में बोले उस प्रकोप मुताबिक काम ना हुए हैं बोले है जेमा क्वालिसी के सामने वर्कन जोन ढेर के भैया एनडीपी है एनपीएस है पीएल है आत्विंतक है बैप है और बोले यार ही वरक एक बरी सोई गए बोले 16 तारीख जुलाई के बोले इवैल्यूएट करेगा और बोले वान है सी नाम से फॉलो साइन स्टेम साल हो रहा बोले एक विल नीड फॉर बारक साइन बोले कांस देला नाख को वनेरियम इट्स वेयर से दमुत है dat zijn politicus interview Peer Bolisega, oud-vicepresident, nu voorzitter van de DNA, vindt het erg dat partijvoorzitter maanden terug afspraken met elkaar hebben gemaakt en deze nog steeds niet zijn gehonoreerd. Alleen merkt hij dat de zaken andere partners wel binnen een dag in orde worden gemaakt. Ik kon ke hoe ja, maar ik kan na hoe he. Bole he. Bole ik roch me ik kon ske kam hoe ja, bole hamar na hoe he. Abob ke bole formaliteit die in de acht moeten worden genomen terwijl hen buiten alle regels om de mensen worden benoemd. Abob leider bole he. Hamar chiet zo rata die klik ne na hoe. Te bole tap ham jantas batabe. Ka hoe ka na hoe. Want is het maar als we geen zeggenschap hebben, dan trafas no de banaan Dr. Brunswijk. Tussen hem en de staatshoofd is het tot nu wel een goede verstandhouding. Het enige wat misgaat is dat zijn zaken niet in orde wordt gemaakt. De abkoon zaken van ja, koeien en janu heen. Privézaak te hoa behoed jada hee. Or hier pe brandweer kabole hee. DNA lid John en Dinota Franswijk kabole hee. Voormalige president, minister van grond बलाइट के अपु बोले है देना ले थे खाली यहाँ पे बोले है जब डामों पे आगी जे लगावे है तब ब्रांतवेर के माख है बुटु देवे के खरास ब्रांडन ओपेटने of het op onverantwoordelijke verbranding van huisvuil in de droge periode zorgt niet alleen voor verschrikkelijke overlast over de burgerij, maar bezorgt de brandweer ook handenvol werk. Te bolle ik erbij mee, behoed lamba chowda likele, bolle artikel 4, lid 1 mee, gedurende de commissievergadering aangeven door de brandweerbond dat er aangescherpt moet worden, op bolle hiape, die nu de brandweer strak bevoegd moeten op te leggen bij vuil verbranding के बारे में है हमारे जनता फ्रॉस्वेग बोले दिनूता फ्रॉस्वेग बोले कर बारे में तो दोस्तों अपन प्रोग्राम को लेकर हम आगे बढ़ते हैं बेनालाद में भैया सोना एनर्जी सेंट्रलें लग गए हैं लांगू खबीत में शेर का 1300 आदमी घर में बोफर सुरीनाम में स्ट्रोम है 24 घंटा जेनिफर सिमोंस ने प्रेसिडेंट जो है ऑन द स्ट्रीट 3 तारीख मई के कि चिचुआ भैले में अब ई लगाए से कि संतोखी लगाए के गए भैया यहां ना बतावे है मलेंतिया यही गले काटे फोल्खस स्टार से विद बस के बस के एक बार है फ्रॉम स्ट्रोम नवा कान से है बोले यंग रखतीन अब बोले तखलाई के दे स्पोर्ट दे सही दखमीज का ओम इलेक्ट्रिसिटी ओक एक अन इकोनॉमिस इंटरसेटन बे फॉर बिल फॉर दूर है ऑफसेटन फन टूरिस्टिस एक्टिविटीज के अन मी बेनलैंड में आई से के टूरिस्टिस से अब बोले फिला मिक्रो ग्रीप सोलर प्रोजेक्ट है का दैट इन 2019 फन स्टार्ट किंग मेट अस डूल है बेनलैंड टू फोरसीन फन कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी टू 2019 में शुरू हुई गिरा और एक बारे में शीना स्टार्स बद्रेव और काबुले पावर शीना एक बारे में काम करी से मिनिस्टर अबियामो फोफा नतुलक हिबो बनादुक्त दाते फोर हैज बलेट खरिक्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अपलोसिंग के बारे में है हमारे जनता तो ये बात है बेनलान के सोन पनील प्रोजेक्ट के बारे में गयाना कोर जाए भैया गयाना बोले इंटरनेशनल खरेख थोफ लगे गए हैं और बोले है बूची से वेनेजुएला के खेन लेखितीम अंस्प्राक हीफ अब द ए सी क्यूबा रेगियो एगो जगह है जहां पे
tel hè. Bolle Venezuela ke huap ik kobo recht na hè. En als koloniale tijd het onderwerp is van een langdurige grensgeschil tussen twee Latijns-Amerikaanse buurlanden. De Ikerbare mee. De assemblée houdt een kaart vast van de betwiste regio als onderdeel van de Venezuelaanse Bolle Venezuela kega. Of willen waarschuwen de Guyana minister van Buitenlandse Zaken. Hij hield een tot de rechter voor essentiële bedreiging van de Venezolaanse claim. Obolega, de discussie draait om een grensgebied van 160.000 vierkante kilometer rond de rivier. Hoofdzakelijk ontdekt met jungle en aangrenzend 70% van het grondgebied is van Guyana mensen. Oro Hamar zijn naam te Abetigri Krieke waren met Kuchna Karehe. Adeko Guyana op een cheat gaat kese lerehe bhaiya. Oro Guyana bahut jabar he bhai. Suriname zijn bahut achter hoe je he. Qua dit soort gebieden mensen. Want Guyana abetak Tigri Krieke na vrij krise. दोस्तों हम आप लोग को एक गीत की ओर और हम जाते हैं तो अभी हम वापस आ जाएंगे

और दोस्तों एक दो समाचार आपको हम और सुनाएंगे, उसके बाद हमारा समाचार खत्म आने को होगा। तो हम चलते भैया, एक आदमी अपन ओतो चलावत एगो ट्रेन वाहन दिखिला फोटो पे चलावत गए है, मकानी कैसे अपन ओतो लेके तुतनी का बोले है तुतली फो कनाल में गोतरों में घुस गए भाई ओतो लेके। 50 वर्षीय एक आदमी भैया शनिवार के वो गए ओतो लेके गोतरों में घुस गए भैया, बस एक ग्रुप आदमी आए लोग हेल्प करे और हेल्प का भैया हेल्प का 31,000 SR दे ऑटोमोबाइल स्वच्छ चुरा ले से और ओकर मोबाइल टेलीफोन ओके बरूफ करी से सब मैया। तो के कई नहीं कर बारे बोले जे तो के अरे नहीं भल तो संबंध बोले तो के ले हेल्प करे मऊ हेल्प ना भाए वो तो के रूफ करे आवे है। तो यहाँ बताए गए है दोस्तों ऑटोमोबाइल इस बलंत में फूटते हैं कनाल एंड वर्ड भरोफ दौर द हेल्पर्स। और दोस्तों ओकर बांध में देखो 3 मेंदर यारक के लंदन के छोटा छोटा लंदन 15-13-14 बरिस के सिपाही पकड़ के गए ले गए सबके सब बरूफ कर ले रहा आदमी लोग का रूफ कर ले रहा मोबाइल टेलीफोन। तेखन ओफर एगो होटल है का परफॉर्म अनिमा जेका नाम बा बार्सिलोना ना द बरूफिंग स्लूखन द फरदाख्तन ऑफ द फ्लक इन द रिक्ते लीली दौरब गए है और वहां सिपाही 2 मई के अन उ सब के पकड़ ले से ग्रुप हुआ के जेमा 8 लंदन रहा dit maal was de slachtoffer beroofd van een geldbedrag en vervolgens met handel. 2 van de verdachten waren daarbij gewapend met messen. De incident vond plaats ter hoogte van Gunpatweg mee. Toen je baan te janta. Toen je op orde kai bhaiya bataye gaye hai. Politie jacht op 2 vervluchtigen na aanval met een messen bij Shell Vredenburg mee. वहाँ पर 2 के दौरा एक पकड़ी से को 14-15 बरिस के तेन ट्वेड 2 अंदर फरदाख्तन विस्त तो अनकोमन। तो बताई गई हैगा इसे 20 अप्रैल के 34 हेबन बरूफ एन मिसांदल और हमारे मनोरत बोले क्रिमिनालिटी तो कम थी हो गए। हम जाए तेरे लास्ट न्यूज भैया यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो नहींगा सेलेंस्की ओक बहरेन ड्रोन डील आन खबोधन सेलेंस्की मेल ऑफ दट है गोल्फ स्टार बसुक एंड दार अन प्रोडक्टिव गस्प्रेक हीव कहार मेरे कोनिंग हमाद बिन ईसा अल कालीफा। तब बोले ओके ऊ देगा भैया अन ड्रोन आन ड्रोन सेलेंस्की रहे जिससे से बकेर फर ओलो के मेरे ओस्टर फाकर अफना द रीक्यू गोल्फ स्टार तन क्रीक एंड दार तमाकन में ग्रोस कालक से ईरान से ड्रोन अनफालन। बोले दिर ईरान उस सब के बोले बहुत करे है तो यूक्रेन बोले है छत लोग के हम देबे हीव दो द ओरलक में रूसलैंड फील एरफारिंग में द आइसकाकलिंग फान दरक्लेक अनबमान द टू स्टेलन द प्रेसिडेंट स्क्रीव द सेलन बराइट इज द फेलेखाइज एरफारिंग द डीलन में बहरान ओम लीफ से बस्केरमन एक है फोरस्टेल ओम एन ड्रोन डील द टीकरन द ड्रोन डी से भैया। तो यहां तक था हमारा आज की समाचार। हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार और प्यार भरे राम। जोनी नंबर 1 है हमारा नाम और ये है मूवी मूवी मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये जोंग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है। और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये जोंग है। आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम थे नागिन का ये सॉन्ग, सुपर हिट्स फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिबर सॉन्ग थे। पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का। ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, निखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

ये सुपर सॉन्ग थे, साथ ही यार किशोर दादा क्या सुनाते हैं, एक डुएट के ओर हम लोग आज चला जाएं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर अपना कला को बहुत ठीक से किया है।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वैत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिके लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाते हैं।

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है नहीं, बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है, ठीक किया है।

मूवी के नाम है बैराग, छोटी सी उम्र में। और नैति जी लता जी का ये जोंग थे जिसमें दिलीप कुमार और शायरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शायरा मानू बहुत ही छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बीत जाएगा और 17 बस बांध में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

जिसके करता हूँ आशिक मेरा नाम है इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है

खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।

और दोस्तों सारे शहर में अब सा और कोई नहीं है, सारे शहर में फिल्म के नाम बैरांग नीखती होंदत एंजसन जीवत का ये जोंग है हमारे दोस्तों। तो कुछ नए कुछ पुराने गीत, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा और तुझे हम तेरी तेरी धड़कनों से पहचान लूंगा। कुमार शानू अलका यागनी का ये सॉन्ग है।

बदल न जाना मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं। मूवी के नाम है राजा निघंटिन 105 नेकत का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और चरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आलका याग्निक का ये जोंग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जे तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा शरबानू राजेंद्र कुमार का ये जो है फिल्म है और जिसमें मूवी के नाम है यहाँ पर बताई गई है इस ओल्ड इज गोल्ड अमन जोंग का ये गीत है। पद्मश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत आओ सुना जाए।

पर्सन दो राजेंद्र कुमार शेरबानु अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिस नई खंत क्रिया यारा नई खंत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ, शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का, ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराहीदार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मोफी के नाम था हीरो नंबर वन फन 1979। और ये जिपर सॉन्ग है दोस्तों, अनहिट फिल्म, जो ये गीत नीदरलैंड में बनाए गए हैं।

और मैं पल दो पल का शायर शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना, और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है, जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना, ये गीत आपको बताते हैं।

0: Our to Mr. Asi, और मेरी जिंदगी में शामिल जरूर होना।
1: तो महेंद्र कपूर का ये एक लाइफ अपनाम है जो आप लोग को हम सुनाएंगे।